0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 9 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5:01।
4: with Radio Musty,
0: your number one Bollywood radio station.

0: सभी को सुप्रभात। संडे की सुबह है, वीकेंड का आखिरी दिन और सुबह के 5:10 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं रिलैक्स रेडियो मस्ती पर, जहां चल भी होगा रिलैक्स भी, और वो भी हमारे इन खूबसूरत सदाबहारिक गानों के साथ है, जो समय के साथ पुराने जरूर हुए हैं लेकिन देर के लिए कभी ओल्ड नहीं होते। और आज की सुबह की शुरुआत हुई है एकदम परफेक्ट अंदाज में, इंतहा हो गई इंतजार की, क्या बात है। कुछ गाने ना बस पचते ही हमें किसी पुरानी याद के पास ले जाते हैं। कभी कोई चेहरा याद आ जाता है, कभी कोई जगह, कभी कोई समय, जब जिंदगी थोड़ी सिंपल थी और खुशियां थोड़ी छोटी लेकिन बहुत खास हुआ करती थी। तो अगर आप भी बेड पर हो, थोड़ा और आराम से लेती रहिए, और अगर आप चाय बना रहे हैं उसकी पहली सिप के साथ इन गानों को महसूस कीजिए। वैसे संडेज के दिन तो ज़्यादातर लोग घर पर ही होते हैं, और शायद बहुत सारे लोग अभी तक सो रहे हैं। कोई बात नहीं, वीकेंड टाइम है, बनता है। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है, संडे को हम बहुत ही मैजिकल बनाने वाले हैं, बहुत ही म्यूजिकल बनाने वाले हैं। रिलैक्स में आज सुबह पुरानी यादें, पुराने गीत और दिल के बहुत करीब मेलोडीज। नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294, एंड एंजॉय करते रहिए बहुत ही खूबसूरत गाने, रिलैक्स के बहुत ही खूबसूरत गाने मेरे साथ यानी रिया के साथ। तो चलिए फटाफट अपने मैसेजेस डेडिकेशंस आप जरूर भेज सकते हैं।
1: रिलैक्स विद रेडियो मास्टी।

0: वल कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और सदाबहार गानों की सबसे खूबसूरत बात यही है, आप उन्हें चाहे कितनी भी बार सुन लो, हर बार कुछ नया सा महसूस होता है। कभी लिरिक्स दिल को छू जाते हैं, कभी म्यूजिक और कभी सिर्फ आवाज़, और फिर होती है वो फीलिंग, अरे यार ये गाना कितने सालों बाद सुना। लेकिन ये गाना जो हमने अभी अभी चलाया, ये हम अक्सर चलाते रहते हैं, सो ऐसी कोई बात नहीं। संडे की सुबह कुछ ऐसी होनी चाहिए ना, ना रश ना अननेसेसरी टेंशन, बस थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा सुकून और बैकग्राउंड में वो गाने जो दिल को हल्का कर दे। आज का पहला और इसी मूड के नाम है, आप जहाँ भी हो, कई लोग काम के लिए निकल रहे हैं, सो आपको हम बोको हर्ष कहते हैं, सफ़र आपका अच्छा रहे, बस हम यही प्रार्थना करते हैं। सो यस, आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, एक काम कीजिए, मोबाइल थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए, आंखें बंद कीजिए और गाने को बस सुनने के बाद आप जीने की कोशिश कीजिए, असल में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गाने जो होते हैं हमें जीना सिखाते हैं। क्योंकि कुछ मेलोडीज का कनेक्शन कानों से नहीं, सीधा दिल से होता है। चिलैक्स जारी है रेडियो मस्ती पर, और आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस भी यहाँ पर हैं, तो चलिए हम दो तीन मैसेजेस देख लेते हैं। जयशन जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम तो ठीक ठाक हैं, आई होप कि आपका ये संडे बहुत ही अच्छा जाए। एंड वी ऑल्सो हैव बॉम्बू से धनेश्वर जी, आपकी पत्नी है सुनीता, दावे दोस्त परिवार के नाम गाना जाता है। एंड सवेरे सवेरे हमारे साथ है जुड़ गई है हमारी प्यारी सी रेखा जी, गुड मॉर्निंग आपको, एंड आई होप आपका दिन अच्छा जाए, ये वीकेंड का आखिरी दिन बहुत बहुत बहुत ही अच्छा जाए। चलिए तो यहाँ पर हम आपके नाम, आप सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करते हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: देखते देखते 5:37 भी हो चला है और इस संडे को अब संडे की तरह जीते हैं। वैसे यहाँ पर हम लेकर आए हैं वीकेंड सॉन्ग्स आपके नाम, ताकि ये वीकेंड बहुत ही अच्छे से कटे। वाल आज का दिन भागने के लिए नहीं है, आज का दिन रुकने के लिए है। थोड़ा रुक कर अपने आसपास देखिए, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ की भाग दौड़ में हम मिस कर देते हैं। सुबह की हवा, चाय का कप, खिड़की से आती रोशनी, घर में किसी अपने की आवाज़ और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत गाना। वैसे अभी तक तो रोशनी नहीं दिखिए, आई एम शॉक, बट दिखेगी, ज़रूर दिखेगी, क्यों नहीं। ये तो संसार का नियम है कि सूरज तो उगेगा और ज़रूर उगेगा। वेल, हैप्पीनेस हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में ही मिल जाती है। किसी को क्या पता हैप्पीनेस क्या है जब तक आपने छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जिया। और बस हम एक एग्जांपल तो ज़रूर ले सकते हैं, एक अच्छा सा गाना चला सकते हैं और इससे आप खुश हो जाएंगे। तो संडे को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, स्लो डाउन, सांस लीजिए, स्माइल कीजिए और म्यूजिक को चलने दीजिए। रिलैक्स के इस पहले आवर में हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत सदाबहार मेलोडीज और अभी तो सुबह का सफर शुरू ही हुआ है। रेडियो मस्ती के साथ आप बने रहिए, क्योंकि संडे की ये सुबह थोड़ी पुरानी, थोड़ी सुहानी और पूरी तरह रिलैक्स वाली है।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: राइट अपनी घड़ी मिलाते

0: चलिए पौने छह बज रहे हैं, समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम, तो हम शुरू करते हैं।
1: एरीज मेष राशि,
0: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराना कोई काम पूरा होने से मन हल्का होगा, परिवार के साथ समय या बिताने का मौका भी मिलेगा। जल्दी में फैसला लेने से बच के रहिए और आज अपनी सेहत और आराम का भी ख्याल रखिए। लकी नंबर है आज आपका 9।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज घर का माहौल सुकून भरा रहेगा। किसी अपने से अच्छी बातचीत हो सकती है। रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। पैसे से जुड़े मामले में सोच समझ कर कदम उठाइए। आज थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए जरूर निकालिए। लकी नंबर है आज आपका 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज आपका मन काफी खुश रहेगा। किसी पुराने दोस्त या जान पहचान वाले से बात हो सकती है। नई बात सीखने का मौका मिल सकता है। घर में किसी की बात को दिल पर ना ले और आज मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: आज का दिन अपनों के नाम रहेगा। परिवार के साथ बिताया समय आपको खुशी देगा। पुरानी कोई प्यारी याद ताजा हो सकती है। दिल की बात किसी भरोसेमंद इंसान से कह सकते हैं। बस ज्यादा सोचने से बच के रहिए। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपके अंदर नई ऊर्जा महसूस होगी। किसी काम में आपकी बात को महत्व मिलेगा। परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा। खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखिए। आज का दिन अपनी पसंद का काम करने के लिए अच्छा है। लकी नंबर है आज आपका 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज मन को शांत रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर के किसी काम को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। किसी करीबी की मदद करने का मौका भी आपको मिलेगा। पुरानी चिंता को पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए। आज आराम और सुकून को पहली जगह दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज का दिन खुशियों से भरा हो सकता है। किसी अपने के साथ अच्छा समय गुजरेगा। आपके किसी काम की तारीफ हो सकती है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर रखिएगा जरूर। आज छोटी सी खुशी भी दिल को बहुत सुकून देगी। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आपका आत्मविश्वास आज बना रहेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका भी आपको मिल सकता है। घर में किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है और बात को लेकर ज्यादा गंभीर होने से बच के रहिए। आज अपने लिए थोड़ा आराम जरूर आप थोड़ा सा आराम जरूर कीजिए आज। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन हल्का फुल्का और खुशनुमा रहेगा। किसी दोस्त या करीबी से मिलने की योजना बन सकती है। आपका मन किसी नए काम की तरफ खींच सकता है। पैसे से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी ना करें। आज हंसी मजाक के लिए अच्छा दिन है। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज घर और परिवार से जुड़ी कोई अच्छी बात हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद भी है। किसी पुराने दोस्त की याद आ सकती है और अपनी बात प्यार से रखिए। सब आपको समझेंगे जरूर। आज आराम को भी अपने दिन का हिस्सा बनाएं। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ नया करने का मन करेगा। किसी अपने से मिली सलाह आपकी काम आ सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। पुरानी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। आज अपने मन की सुनिए और दिन को खुशी से आप गुजारिएगा जरूर। लकी नंबर है आज आपका 12।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज का दिन भावनाओं से जुड़ा रहेगा। किसी खास इंसान के साथ अच्छा समय मिलेगा। पुरानी याद आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और अपने फैसलों पर भरोसा रखिए। आज संगीत और सुकून आपका मूड और बेहतर कर सकते हैं। लकी नंबर है आज आपका 7। तो ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। तो चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2. Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: Tracks with Radio Musty.
1: चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं। देवानंद जी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको देवानंद जी। वेल, आप गाना डेडिकेट करते हैं एज यूजुअल फॉर बबीता दर्शनी कृष्ण कल्याण रिया, साथ ही साथ सबको विश करते हैं हैप्पी संडे। आपको भी हैप्पी हैप्पी संडे। एंड अनुषा ओगाम हमारे साथ है, जुड़ी हुई है आप हैश से, और आज आपकी सासू माँ अमृता का जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे टू योर मदर इन लॉ, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज ऑन हर बर्थडे। जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आप कह रही है कि 65th बर्थडे, 60 साल की हो गई है, सो दैट्स अ बिग थिंग। हैप्पी बर्थडे आपको, एंड यस, बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम पति नंदन, बेटा आदेश एंड द होल परिवार।

जैसे क्या होता है कि जब आप नॉर्मल मैसेजेस भेजते हैं तो कभी कभार ये पूरा नहीं आता, कट जाता है. तो यहाँ पर आई गेस कि एक दो नाम कट गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम उनको पूरे परिवार की ओर से विश करते हैं हैप्पी बर्थडे आपको, और जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनको हैप्पी बर्थडे.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घर में लाते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है. संध्या नमस्कार आपको. अभी
6: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की

0: परीक्षा की गई। एफसीसी ने मॉरिशस में साइबर और ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। इनमें मुख्य रूप से व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट और बैंक के डेटा की चोरी शामिल हैं। अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक का हशीश रखने का दोषी पाया गया है। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है। इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो साल 2015 से 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने के से पहले दिख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया है। और विदेश स्तर पर मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को नेटो शैली बताया जा रहा है, जिसमें एक देश पर हमला होने पर 3 देशों पर हमला माना जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये नया सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान को रोकने, अमरीका पर घटती निर्भरता को पूरा करने और इसराइल को संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड और अस्थिर हवाओं के कारण हमारे स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वीय ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। आज सुबह ही ऊंचाई पर बारिश के चलते कोहरा भी छाया रहेगा, जबकि दिन के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लांटों पर बरसात होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पर लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। उधर तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:35 पर, जबकि शाम सूर्यास्त 5:55 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: छह बजकर दस मिनट हो रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। संडे की सुबह है और मॉरिशस में मौसम भी आज बिल्कुल चिलैक्स के मूड में है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी यहाँ पर टमोका में, बट अगर आपकी यहाँ बारिश हो रही है तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। एंड यहाँ पर अब बारिश रुक गई है, लेकिन ठंडक अभी भी हवा में है। वो बारिश के बाद की खुशबू, ठंडी हवा, गीली सड़कें और एक कप गरमा गरम चाय, बस संडे मॉर्निंग इस फीलिंग को कोई भी जी सकता है। इट्स सुपर, बहुत ही खूबसूरत है। और अब तो समय भी हो चला है रिलैक्स के सेकंड आवर का। पहले आवर में हमने सुना खूबसूरत सा बहर गाने, और अब म्यूजिक में थोड़ा सा बदलाव। अब होंगे कुछ मिक्स गाने, थोड़े पुराने तो

0: नहीं, कुछ सॉफ्ट, कुछ थोड़ी खुशनुमा, सब कुछ होने वाला है. मतलब संडे मॉर्निंग का एकदम परफेक्ट मिक्स होगा यहाँ पर. और अगर आप अभी भी कंबल में हो तो ऑनेस्टली उठने की कोई जल्दी नहीं, बस रेडियो की आवाज़ थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए, चाय का कप हाथ में लीजिए और इस ठंडी सुबह को म्यूजिक के साथ महसूस कीजिए. चिलैक्स है, संडे है, बारिश रुक चुकी है, लेकिन म्यूजिक बिल्कुल नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पर आप सुन रही है मुझे रिया को ऑन RM2 Radio Masti. It's your chillax show. Aapki dedications messages on 54991294.
1: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: संडे की सुबह में एक अलग ही आजादी होती है। अलार्म बजने के बाद भी दिल कहता है बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी जरूरी भी है। हर दिन समय के पीछे भागते हैं, तो एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब हम समय को थोड़ा धीरे चलने दें। वाल आज का दिन किसी रेस का नहीं, आज थोड़े देर से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय दो बार हो सकती है, गाने थोड़े ज्यादा बज सकते हैं और काम थोड़ा बाद में भी हो सकता है। बस अपने दिल को थोड़ा आप आराम दीजिए और रेडियो मस्ती पर रिलैक्स आपके संडे मॉर्निंग को बना रहा है और भी खूबसूरत खूबसूरत गानों के साथ। अनुअल यहाँ पर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन की ओर हम बढ़ेंगे। वी हैव पहले हम व्हाट्सएप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किशन रघुनाथ जी ने क्या भेजा है। हेलो रेडियो मस्ती टीम, हेलो आपको भी एंड हैप्पी संडे आप पुश करते हैं सभी को। नेक्स्ट ट्रैक आप अपनी पत्नी माला एंड आपकी बेटी जिया एंड रिया के नाम डेडिकेट करते हैं। ऑल राइट, हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे उनके नाम किशन जी का खूबसूरत सा गाना। सवेरे सवेरे हमारे साथ जुड़ी हुई है ललिता जीतन जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको। एंड श्याम देवीचंद जी हमारे साथ कनेक्टेड है, गर्मा गर्म इलायची चाय एंजॉय कर रहे हैं। वेल, इलायची चाय किसको पसंद नहीं, हमें भी बहुत ही पसंद है एंड स्पेशली ऐसे मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। सो यस, आप एंजॉय करते रहिए। और यहाँ पर प्रेमिला है प्लेंदी पापा, इसे एक गाना अपने हबी रंजीत और पूरे परिवार के नाम डेडिकेट आप करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट ट्रैक इज आउट टू ऑल ऑफ देम जो हमारे साथ है इस समय कनेक्टेड है एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी हैप्पी संडे। रविवार आपका बहुत ही अच्छा जाए और ये जो खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं आपको वो बहुत ही पसंद आए।
1: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

रविवार 9 अगस्त 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 47 नई जांच शुरू की और 14 लोगों को किया है गिरफ्तार। 400 ग्राम से अधिक हशीश रखे जाने पर दोषी पाए जाने की वजह से जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की सजा सुनाई गई और 25,000

0: रुपए का जुर्माना भी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। और विदेश में मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को बताया जा रहा है नेटो शैली। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। एफसीसी ने मॉरिशस में ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स और बैंक के डेटा की चोरी। जेनी येलप्पा की रिपोर्ट पर टीना बुदना का विवरण।
1: पहली अप्रैल से 30 जून तक संपत्ति की वसूली के मोर्चे पर अप्रैल में आयोजित पहली पब्लिक ऑक्शन में जब्त और कन्फिस्केटेड की गई 69 संपत्तियां बेची गई, जिससे 33 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम हासिल हुई। इनमें 48 कारें, 5 निर्माण उपकरण, 2 ट्रक, 7 मोटरसाइकिल और 7 नावें शामिल हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी के मामलों में 82.9 मिलियन रुपए की संपत्ति पर रोक लगाने के उपाय किए गए। एफसीसी ने एक रिटायर्ड व्यक्ति का मामला भी सामने रखा, जो व्हाट्सएप पर स्कैम का शिकार हुआ। एक व्यक्ति ने खुद को उसके बैंक का एम्प्लॉई बताकर उससे बैंक की जानकारी और वन टाइम पासवर्ड हासिल कर लिए। इसके बाद उसने उसे अपने पैसे एक कथित सीक्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस तरह 20 लाख रुपए से अधिक की रकम विदेशों में मौजूद बैंक अकाउंट्स में भेज दी गई और बाद में अलग अलग खातों में बांट दी गई, जिससे समय रहते रकम वापस हासिल करना संभव नहीं हो सका। एफसीसी ने मलागाजी बिजनेसमैन मामी रवातुमांगा से जुड़ी अपनी जांच का भी उल्लेख किया है, जिससे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ी अपनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में से एक मानती है। अक्टूबर 2025 में मॉरिशस पहुंचने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग की साजिश और अन्य कथित वित्तीय अपराधों को लेकर जांच शुरू की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करीब 7.3 बिलियन रुपए की संपत्ति पर क्रिमिनल अटैचमेंट ऑर्डर्स जारी किए, ताकि जांच के दौरान इन सभी असेट्स को हटाने या छिपाने से रोका जा सके। वहीं इस अवधि के दौरान एफसीसी की ओर से आयोजित 85 जागरूकता सत्रों में 12,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
0: अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने का दोषी पाया गया है। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। शबनीज उजिया वाहिद अली की रिपोर्ट पर विवरण तीना बुदना का।
1: ये मामला 18 नवंबर 2024 का है। पुलिस ने रोशबा में रहने वाले जोसेफ जैक्सन लुई के घर की तलाशी ली थी। वो पशुपालक है। तलाशी के दौरान करीब 22 लाख रुपए की ड्रग बरामद हुई। ड्रग को एक बड़े प्लास्टिक बैग में छिपाकर रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। घटना के समय जोसेफ जैक्सन लुई की उम्र 43 साल थी। उसने माना कि ड्रग्स उसी की थी, हालांकि उसने ये बताने से इनकार कर दिया कि ड्रग उसे कहां से मिली और वो उनका क्या करने वाला था। अपने रूलिंग में जज मेहदी मानरा खान ने अपराध को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की मात्रा और कीमत से पता चलता है कि इन्हें निजी इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए रखा गया था। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। कोर्ट ने उसके गिल्टी प्ली पारिवारिक स्थिति और अदालत में मांगी गई माफी को

0: ध्यान में रखा। उसे शुरू में 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गिल्टी प्ली के कारण उसकी सजा में एक तिहाई की कमी कर दी गई है।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है, इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से दिख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया। महामारी के दौर को छोड़कर भी वस्त्र उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस अवधि के दौरान श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की है। शैली निर्बन की रिपोर्ट पर विवरण तीना बुद्धना का।
0: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार निर्यात पर केंद्रित कंपनियों यानी ईओई में 2025 के दौरान रोजगार 10.2% घटा है। इन कंपनियों में टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा है और टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार 11.2% कम हुआ है। कोविड के वर्षों को छोड़ दे तो ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इसके बावजूद इन कंपनियों के उत्पादन में सिर्फ 1.3% की कमी आई। इसका मतलब है कि ईओई में प्रति कर्मचारी उत्पादन क्षमता 9.9% बढ़ी, जबकि टेक्सटाइल में ये बढ़ोतरी 9.1% रही। कोविड के बाद की वापसी को छोड़ दे तो ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यानी जो फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं, वे काफी कम कर्मचारियों के साथ लगभग उतना ही उत्पादन कर रही है। इस बढ़ोतरी की वजह ऑटोमेशन नहीं है। इन कंपनियों में मशीनों और दूसरी पूंजीगत संपत्तियों में भी कमी आई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में आई गिरावट उससे कहीं ज्यादा रही। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जहां निर्यात पर केंद्रित कंपनियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया, वहीं पूरे निर्माण सेक्टर में जिससे स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करने वाली कंपनियां भी शामिल है, 2025 में रोजगार 0.6% बढ़ा। कई वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। इससे निर्माण सेक्टर की दो अलग तस्वीरें सामने आ रही है। निर्यात पर निर्भर टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पर काफी दबाव है, जबकि स्थानीय बाजार के लिए काम करने वाला हिस्सा स्थिर है और कुछ कंपनियां नए लोगों को रोजगार भी दे रही है। लागत और प्रतिस्पर्धा के मामले में भी रिपोर्ट में अहम जानकारी दी गई है। निर्माण सेक्टर में मजदूरी की लागत डॉलर के हिसाब से 2025 में 7.7% बढ़ी, जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं निर्यात पर केंद्रित कंपनियों में मजदूरी की लागत 1.5% कम हुई। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की संख्या में की गई कटौती है।
1: हालांकि इस रिपोर्ट में शामिल अवधि साल 2025 पर समाप्त होती है। इसमें वुलनिट्स, यूनिवर्सल फैब्रिक्स और क्लाइन टेक्सटाइल्स का वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मंदी की प्रक्रिया में जाना और नहीं मई 2026 से समाप्त हुई नौकरियां शामिल हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। अर्थशास्त्री एरिक निंग का विश्लेषण, निर्यात क्षेत्र और कपड़ा उद्योग की चुनौतियां। जी हां, निर्यात उन्मुख उद्योगों में श्रमिक उत्पादकता में 9.9% की वृद्धि को लेकर अर्थशास्त्री एरिक निंग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस क्षेत्र में उत्पादन में 1.3% की गिरावट आई है, जबकि रोजगार 10.2% घटा है। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार जब नौकरियों व कर्मचारियों की संख्या घटती है तो उत्पादकता का आंकड़ा अपने आप बढ़ा हुआ दिखने लगता है। वस्त्र उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव में है। बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मॉरिशस में श्रम लागत बढ़ गई है। निर्माण सेक्टर में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है, यानी कि उत्पादन में 1.4% की वृद्धि, रोजगार में 0.6% की वृद्धि, उत्पादकता में

0: 0.8% की वृद्धि। ये एक सामान्य प्रगति है, जबकि चिकित्सा उपकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में कारोबार का विस्तार जारी है। हमारी सहयोगी शैली नियबन ने अर्थशास्त्री एरिक निंग से बात की, उनको सुनते हैं विवरण टीना बुदना का।
1: टेक्सटाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, लेकिन इसमें रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। हर साल कुछ कंपनियां बंद हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इसका ज्यादातर काम निर्यात पर निर्भर है। वहीं दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में ऐसी कंपनियां भी है जो स्थानीय मंडी के लिए काम करती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर कंपटीशन थोड़ा कम है और ये कंपनियां अपने कारोबार को जारी रख सकती है। रोजगार की संख्या यहाँ डिनोमिनेटर है। जब रोजगार की संख्या कम होती है तो रेशियो अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है। कई बार प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसलिए बढ़ती हुई दिखाई देती है क्योंकि रोजगार की संख्या कम हो गई है। आखिर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? ये प्रोडक्शन को रोजगार की संख्या से डिवाइड करके निकाली जाती है। आगे चलकर किसी भी काम को कम खर्च में कर पाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में लगभग हर काम के लिए मजदूरों पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है।
0: देश में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर के एमएसएम ने कल पोर्टली में सन ट्रस्ट में प्रेस को संबोधित किया। जोन जोगो ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, इनमें फ्लैक में हाल ही में हुई पार्टी का जुटाव, राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल रहा। पूरी जानकारी कुणाल गोजी की इस रिपोर्ट में, विवरण विधिमा सिबरन का।
2: जोली जोंगा ने विपक्ष के नेता के पद से अपने इस्तीफे पर बात की। जोली जोंगा का दावा है कि एमएसएम पेंशन योजना में संशोधन करेगा। उनके अनुसार मौजूदा प्रणाली मैनुअल वर्कर्स के प्रति अन्यायपूर्ण है। एमएसएम छोटे और मध्यम उद्योगों पर लगाए जाने वाले वैट की सीमा की भी समीक्षा करने का वादा करता है। एमएसएम ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पूछताछ के दायरे में आई सांसद वेरोनिक लुगोविन के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से जांच शुरू करने की मांग की है। एमएसएम सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित एक नई नीति की भी वकालत करता है। जोली जोंगा ने हाल ही में कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को बधाई दी है और टूर डी फ्रांस में किम्बर्ली लोकोपियनो के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है।
0: विपक्ष के नेता के पद पर चेतन बाबूलाल की नियुक्ति को लेकर पॉल बेरांजे ने कहा कि संविधान के अनुसार इस पर फैसले लेने का अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति को है। एबन में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। पॉल बेरांजे ने साथ ही बताया कि विपक्ष के विप के पद के लिए जोआना बेरांजे का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। सिल्वाना पारिमामन की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
3: पॉल बेरांजे ने चेतन बाबूलाल की विपक्ष नेता के पद पर नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी।
4: Nous fin écrire au président de la République. Nous fin écrire une lettre signée par nous trois. Pour éclaircir les choses et non pas pour demander quoi que ce soit. Le président exerce sa liberté totale sous la Constitution. Qui fait nous écrire? Parce que nous voulons bien mettre la Constitution dire si le président trouver qu'il y a un nouveau parti qui est dans la majorité, il n'est même pas obligé, il est capable sans le leader de l'opposition. Loupé propose l'honorable Jean-Alain Béranger comme whip de l'opposition.
3: Paul Béranger ne Véronique Legovin qui est junior ministre qui pète si इस्तीफे को लेकर पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे जांच पूरी होने का इंतजार करेंगे। पॉल बेरांजे का मानना है कि हाल के घटनाक्रमों खासकर पेंशन से जुड़े मामलों को देखते हुए शासन चलाने के तरीके में बदलाव जरूरी है। उन्होंने अन्य सुझावों के साथ फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट और एक इंडिपेंडेंट फिस्कल कमीशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।
0: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, मध्य पूर्व

युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को नेटो शैली का बताया जा रहा है, जिसमें एक देश पर हमला होने पर तीन देशों पर हमला माना जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये एक नया सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान को रोकने, अमेरिका पर घटती निर्भरता को पूरा करने और इसराइल को संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। मई मध्य में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला संगठन के कुछ कार्यकर्ता समुद्र के रास्ते सहायता लेकर गाजा में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान इजरायली सैन्य बलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। छूटने के बाद 24 में से 22 कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें हिरासत में बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अब आखिरी दौर पर पहुंच गई है, और लेकिन ईरान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिर्फ शिपिंग रूट पर समझौते होने से जल मार्ग पूरी तरह से नहीं खुलेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान टैंकरों पर टोल वसूल रहा है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और दुनिया भर में महंगाई से हुए नुकसान का मुआवजा भी शामिल है। उधर बैंकॉक में दादा दादी की हत्या के बाद स्कूल में किशोर की ओर से ही की गई गोलीबारी के मामले में मरने वालों की संख्या शनिवार को 8 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 वर्षीय एक छात्रा की अस्पताल में ही मौत हो गई। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 7 की हालत शनिवार को गंभीर बताई जा रही है। घायल हुए लोगों में से अधिकांश 12 से 14 वर्ष की आयु के थे। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड और अस्थिर हवाओं के कारण हमारे स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वीय ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। आज सुबह ऊंचाई पर बारिश के चलते कोहरा भी छाया रहेगा, जबकि दिन के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर बरसात होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:35 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:55 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जांच शुरू की और 14 लोगों को किया है गिरफ्तार। 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने पर दोषी पाए जाने की वजह से जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। और विदेश में मध्य पूर्व के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को बताया जा रहा है नेटो शैली। तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने

0: ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादिर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

टकोरी, श्री जयराज टकोरी, जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 10 बजे उन्हीं के घर वैजे रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। लातूर रोड रुश्तिया में 58 साल के 58 years old के श्री गोराना तिमादू की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला तिमादू के घर लातूर रोड रुश्तिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। भीम जोरी स्ट्रीट तियारूज में 86 साल की 86 years old की श्रीमती रेशमी जोरी सुकलोल पैदाइश नाम सुकलोल और जिन्हें सब लोग रेशमी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विकास जोरी के घर भीम जोरी स्ट्रीट त्यागोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। सियोगुलाम लेन नोवेल फ्रांस में 64 साल के 64 years old के श्री लक्ष्मी डोलोरी जिन्हें सब लोग किशो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर सियोगुलाम लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजिन लेन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एसएसओ रोड अपर वेल में 64 साल की 64 years old की मिसिस बीबी फाजिला मुसफिया पैदाशी नाम बगाली और जिन्हें सब लोग फाजिला के नाम से भी जानते थे, वह इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 10 बजे उनके बेटे जनाब युतोजा मुसफिया के मकान एसएसओ रोड अप वेल से निकालकर दफनाने के लिए प्लेंडे पापाय का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। सिबोरत लेन फ्लोरियाल में 68 साल के 68 years old के श्री प्रवीण सिबोरत जिन्हें सब लोग प्रवीण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति सिबोरत के घर सिबोरत लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 16 प्रोविडेंस गली प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 69 साल की 69 years old की श्रीमती धुरवंती तपसी पैदाशी नाम सुब्रन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे श्री हेमंत कुमार तपसी के घर नंबर 16 गली प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्का की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। नंबर 6 एसएसओ गली सुदना कैथोबोन में 80 साल के 80 years old के श्री कृष्णा अपिलियाप्पा की मृत्यु हो गई है, जिन्हें सब लोग बाला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती कमला इपिलापिया के घर नंबर 6 एसएसओ गली सुदना कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM।
Charlie rode a montagne blanche mais Charlie rode a montagne blanche mais a 6 saal ki 80 years old ki

0: श्री धनीलाल बाउहानी, श्री धनीलाल बाउहानी की, जिन्हें सब लोग ईश्वर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीति बाउहानी के घर शाले रोड मोताई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। लोडे लेन फ्रिकॉन फ्लैक में 77 साल की श्रीमती शीला जोहाना चोइतन, पैदाशी नाम सीगुलाम और जिन्हें सब लोग जोहनिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर लुदाई लेन फ्लिकॉन फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोम्बू की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अचना लेन लिस्कालिए में 69 साल की श्रीमती निराला उचाना, पैदाशी नाम सनासी और जिन्हें सब लोग सरोज के नाम से भी जानते थे, सरोज और मैडम वासु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनकी भाभी श्रीमती राधा अचना के घर अचना लेन लिस्कालिए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रेजिडेंस सेंट जोसेफ मोंटाई ब्लांश में 81 साल की श्रीमती भानुमती पाइनी, पैदाशी नाम लेखराज और जिन्हें सब लोग मैडम पाइनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनके बेटे श्री सुनील पाइनी के घर रेजिडेंस सेंट जोसेफ मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर तीन बेसाक गली बोबासे में 66 साल की श्रीमती गीता मणि नदरचंद, पैदाशी नाम लीलमोन और जिन्हें सब लोग गीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर नंबर 3 बिसाक गली बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। और मगाजें गली विल्नो मेबर्ग में 61 साल के श्री नवबर सिंह सियापत, जिन्हें सब लोग राजेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर मगाजें गली विल्नो मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए डिटोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5,
1: East, West,
2: 96.4,
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good morning, Saviko. Suprabhat. Ghadi milate chaliye subah ke theek 7:01.
4: Timeless Tadka.
1: RM2.
4: Timeless Tadka.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, संडे की सुबह 7:07 परफेक्ट टाइमिंग और रेडियो मस्ती पर अब समय हो गया है टाइमलेस तड़का का। रिलैक्स के साथ सुबह को थोड़ा आराम दिया, अब म्यूजिक में आ रहा है थोड़ा सा तड़का। मौसम देखिए थोड़ा ग्लूमी सा है, आसमान में बादल है, हवा में ठंडक है, बारिश भी हो चुकी है, लेकिन मौसम का भी क्या भरोसा, कभी बादल कभी धूप कभी बारिश और कभी अचानक से एकदम खुला आसमान, बिल्कुल जिंदगी की तरह। कभी मूड एकदम मस्त, कभी थोड़ा शांत, कभी एनर्जी हाई और कभी बस मन करता है कि चुपचाप चाय लेकर बैठ जाए। लेकिन एक चीज है जो आपके मूड को बदलने की ताकत रखती है, वो बताइए हमें क्या है? एग्जैक्टली म्यूजिक। जी हाँ, म्यूजिक ही हम लेकर आए हैं और वो भी जबरदस्त गाने। और आज संडे है तो म्यूजिक भी संडे जैसा ही होना चाहिए, थोड़ा मस्ती भरा, थोड़ा प्यारा, थोड़ा पुराना, थोड़ा नया और पूरा दिल से। जी हाँ, मिक्स गाने हैं यहाँ पर, आप ही के पसंदीदा गाने हैं जो हम चलाते रहेंगे। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, घर में जो सो रहे हैं उन्हें अभी तो मत जगाए, लेकिन जो जाग चुके हैं उनके लिए एक जबरदस्त संडे मॉर्निंग शुरू करते हैं टाइमलेस तड़का रेडियो मस्ती पर। संडे का मूड म्यूजिक के साथ, रिया के साथ, यहाँ पर आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस 5499-1294।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2।
0: टाइमलेस तड़का
3: लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनो।
3: सुना।
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: Radio Musty. Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipia pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
2: RM2
3: Radio Musty.

0: fils ne sont pas concernés par ces mesures. Vous constatez un gaspillage d'énergie? Signalez-le par WhatsApp sur le 57 57 45 34 ou sur le 52 53 01 30. Chaque geste compte. Ensemble, économisons l'énergie pour un avenir meilleur.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: ये खूबसूरत सा गाना हम डेडिकेट करते हैं चिंगादू, आपके चार बेटी है, चार बहू और सात द ग्रैंड किड्स है जो फिल्म में रहते हैं, जो सभी के नाम और ये मैसेज आया है आने की ओर से, आपके पूरे परिवार के नाम ये गाना जाता है।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: संडे की सुबह और चटपटी स्पोर्ट्स खबरें लेकर आ गए हैं विकास जी द स्टूडियो. सो चलिए उनको सुनते हैं. गुड मॉर्निंग, नमस्ते आपको विकास जी.
4: नमस्ते हरिया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. ये बुलेटिन शुरू करते हैं साइकिलिंग प्रतियोगिता टू डी फ्रांस के साथ. किम ले कू दे पिना को हार्दिक बधाई और धन्यवाद भी. मॉरिशस का नाम दुनिया भर में ऊंचा करने के लिए महिला टू डी फ्रांस के पूर्वांतिम चरण में कल इसके आठवें चरण में किम ने चौथा स्थान प्राप्त किया. रेस की विजेता एवं येलो जर्सी डेमी वोलरिंग से वो केवल 38 सेकंड पीछे रेस पूरा कर पाई. ऐसे में अभी डेमी वोलरिंग येलो जर्सी के साथ आज अंतिम रेस में हिस्सा लेगी. संभवतः वही पहले आएगी, लेकिन अभी भी सब कुछ संभव है. ऐसे में किम जनरल क्लासिफिकेशन में भी एक पायदान ऊपर अब

नौवे स्थान पर आ गई है, यानी टॉप टेन में गर्व से मॉरिशस की साइक्लिस्ट किमले कू दे पिना साइकिलिंग की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता टू दे फ्रांस में है, जिसका आखिरी चरण है 99.2 किलोमीटर का माउंटेन स्टेज। इसलिए किमले कू दे पिना को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का बोलबाला है। एक ओर फ्रेंडली मैचों में दोस्त दोस्त न रहा और दूसरी ओर ट्रांसफर बाजार में प्यार प्यार न रहा। सबसे पहले फ्रेंडली मैचों की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच मैच ड्रॉ रहा 1-1। कल इस मैच के शुरू होते ही खेल के दूसरे मिनट पर ही इब्राहिम एम्बाये ने पहला गोल स्कोर किया। पहली कील ठोंकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस पर। इब्राहिम एम्बाये लिवरपूल का टारगेट है, उसने पहला गोल स्कोर किया और 32nd मिनट पर ही जाकर ब्रायन एम्बेमो का इक्वलाइजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अंततः मैच इसी स्कोर पर समाप्त हुआ और सेकेंड हाफ में ब्रूनो फर्नांडेस, यूरी चेलमंस आदि खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिला। मेसन माउंट 20 मिनट बाद ही घायल हो गया, उसको बाहर निकालना पड़ा। सो यूनाइटेड गेटिंग रेडी। पेरिस सेंट जर्मेन अब इसी बुधवार को खेलेगा सुपर कप में एस्टन विला के विरुद्ध, इसलिए कल कई खिलाड़ी मैदान पे उतरे और कई खिलाड़ी अभी भी वर्ल्ड कप की छुट्टी पर है। सो बुधवार को पूरी टीम मैदान पे उतरेगी सुपर कप में एस्टन विला का सामना करने के लिए। यूरोपियन चैंपियंस लीग विनर पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस यूरोपा लीग विजेता विनर एस्टन विला बुधवार रात 11 बजे। फ्रेंडली मैचों में ही कल टोटेनहम और गेटाफे के बीच मैच ड्रॉ रहा 1-1। कोनो गलागे ऑन टारगेट फॉर द स्पर्स। चेल्सी ने एसी मिलान को 3-0 से हराया। होआउ पेड्रो का एक डबल फॉर चेल्सी। मोसेस कैसेडो का तीसरा गोल। चेल्सी 3 एसी मिलान 0। चेल्सी के द ब्लूज आज रात से कल सुबह तक मलेशिया में होंगे अपने आखिरी टू का मैच, इस टू का आखिरी मैच खेलने के लिए। इस पर बात करेंगे। यूवेंटुस 1-2 और कल ही गतासराय की हार हुई। गतासराय 1-2। ट्राबजोंस्पोर की भी हार हुई। गुजतेपे ने उसे 2-1 से हराया। बता दें कि ट्राबजोंस्पोर ये वही टीम है जिसने मोहम्मद सलाह को साइन किया है और कल शाम मोहम्मद सलाह को ट्राबजोंस्पोर के मैदान पे 25,000 फुटबॉल फैंस के सामने प्रस्तुत किया गया और इतने सारे फैंस मोहम्मद सलाह को देखने और मिलने आए थे। सलाह ने अपने बखान में, अपने वक्तव्य में कहा कि वो एकदम खुश हैं, बल्कि उनकी आंखों से आंसू भी टपक पड़े इतने सारे फुटबॉल फैंस को देख कर, वो भी बिना फुटबॉल मैच के। सो ट्राबजोंस्पोर की कल हार हुई 2-1 से, जबकि रियल मैड्रिड ने कल एवे जाकर फेरेनवारोस को 2-1 से परास्त किया। मैड्रिड के लिए मारियो रिवास और कार्लोस एस्पी का 1-1 गोल रहा। और ब्राइटन ने एएस रोमा को 3-0 से हराया। तो यूवेंटुस की हार हुई, यूवेंटुस 1-2। आज शाम कई अन्य महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे। आर्सेनल मैदान पे उतर रहा है शाम 5:30 बजे, 5:30 PM भूलेगा नहीं। एनफील्ड में लिवरपूल का मुकाबला आईएस मोनाको से। नए हेड कोच एंटोनी इराउला का ये पहला मैच होगा एनफील्ड में और कई खिलाड़ी लौट आए हैं जिनमें से वर्जिल वान डाइक भी शामिल है, आज वो अपना मैच खेलने वाला है। और रोनाल्ड अराउहो जो अपना मेडिकल पूरा करने आ रहा है आज सुबह ही लिवरपूल में, बार्सिलोना को छोड़कर वो आ गया है। खबरों के मुताबिक डील सौदा एकदम तय हो गया है। 55 मिलियन पाउंड में वो एक साल के लोन पर आ रहा है और एक बाइंग खरीदने का विकल्प का ऑप्शन भी है। यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो रोनाल्ड अराउहो जो केवल 27 साल का है, 27 ईयर ओल्ड का है, यूरुग्वे का कप्तान भी है, वो लिवरपूल में एक सरप्राइज डील के रूप में आ रहा है आज सुबह मेडिकल पूरा करने के लिए। सो इतना सब कुछ आज के फ्रेंडली मैचों को लेकर। मैनचेस्टर सिटी भी आज एथलेटिको मैड्रिड का सामना करने वाली है। इंग्लैंड के लीग कप में कल काफ़ी कुछ मैच खेले गए जिनमें वेस्टहम यूनाइटेड ने पोर्टसमाउथ को 3-1 से परास्त किया। कई महत्वपूर्ण मुकाबले कल खेले गए और आज भी ये मैच जारी रखे जाएंगे। जबकि स्कॉटलैंड की प्रीमियरशिप में कल डंडी ने अबेदीन को 2-0 से हराया। सिन मिरेन 1, सिन जॉनस्टोन
एक आज इसी स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक

0: वे जाएगी किलमार्नोक के मैदान में, तो रेंजर्स का मुकाबला होम मैदान पे हाइबर्नियन से है। सो फ्रेंडलीज में मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, चेल्सी खेलेगी आज दरुल ताजिम के विरुद्ध। बता दें कि दरुल ताजिम जो है वो उसका कोच इसर्टेन लुइस गार्सिया है, जबकि इधर क्साबी अलोंजो। सो इन दोनों की मुलाकात होगी, पुराने साथी है लिवरपूल में, दोनों साल 2004 में एक साथ आए थे लिवरपूल में और यहाँ पर कई ट्रॉफीज जीते और साथ में यूरोपियन चैंपियंस लीग भी। आज इनकी मुलाकात होगी मलेशिया में, दरुल ताजिम का मुकाबला चेल्सी फुटबॉल क्लब से है और लिवरपूल वर्सेस एस मोनाको आज शाम 5:30 बजे। ट्रांसफर बाजार में चेल्सी अभी भी कुछ खिलाड़ियों को लाने की कोशिश में है, जबकि ब्रूनो गिमारेस आर्सेनल में चला गया 75 मिलियन पाउंड में। वो न्यूकासल यूनाइटेड को छोड़कर चला गया, ब्राजील का ये मिडफील्डर अब आर्सेनल का हो गया। मैनचेस्टर सिटी का प्लेमेकर रोड्री एफसी बार्सिलोना में जाना चाहता है, उसने खुद एक ट्रांसफर की मांग की है। अब एफसी बार्सिलोना को 40 मिलियन यूरो से अधिक एक इम्प्रूव्ड बिड, एक बढ़ा चढ़ा कर एक प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। सिटी ने कहा कि कम से कम 60 मिलियन यूरो चाहिए रोड्री के लिए, आज या कल तक वो चला जाएगा, रोड्री चला जाएगा एफसी बार्सिलोना में। और मैनचेस्टर सिटी ने अपने सेकंड गोलकीपर जेम्स ट्राफोर्ड को बेच दिया लीड्स यूनाइटेड के साथ 45 मिलियन पाउंड में। तो उसने एक सेकंड या थर्ड गोलकीपर के लिए मासे के गोलकीपर को साइन किया है कम पैसों में। और ब्रैडली बाकुला के लिए पेरिस सेंट जर्मेन का 150 मिलियन यूरो भारी पड़ रहा है, काफ़ी महंगा है। द रेड्स चुप हो गए हैं, इब्राहिम एम्बाई का ट्रांसफर भी अटक गया है इन सब के को लेकर। क्रिकेट में श्रीलंका ए वर्सेस इंडिया तीसरे दिन का खेल आज आरंभ होगा और तीसरे और आखिरी दिन का खेल, भारत ने अपनी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए जवाब के तौर पर, श्रीलंका ए के 363 रनों के जवाब में, यानी कि 6 रनों से अभी भी भारतीय टीम पिछड़ रही है। लेकिन आज का आखिरी दिन वो शुरू करेगा, 4 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। क्रिकेट की बात हुई तो मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 के अंतर्गत कल कंटिनेंटल चीटाज ने वन हेल्थ जागुआ को 7 रनों से परास्त किया। नुआन वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच। आज सुबह इसी आईसीई सीजन 4 में सुबह 9 बजे कैंपस अब्रोड लायंस का मुकाबला थॉमस कुक टाइगर्स से है और दिन के 1 बजे एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में ही मापू में एएमजी पैंथर्स का मुकाबला एपीपी लेपर्ड से। फुटबॉल में क्षेत्रीय स्तर पर रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब दुदला बीमा चैलेंज कप के अंतर्गत कल रेड स्टार बुनाकेई ने रेनबो ग्रांबे को 2-1 से हराया आज शाम 3:30 बजे। वहीं के मैदान पे स्पोर्टिंग बॉयज एससी वर्सेस एसोसिएशन रोशनवा। और मॉरिशस में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस के एक्स इंटरनेशनल खिलाड़ी अमीन दिलू को स्काउट्स क्लब के पुराने कोच हरुण दबस के हाथों शुक्रवार को गोल्डन बूट्स और गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फुटबॉल में सबको एकत्र करने के लिए अमीन दिलू को हार्दिक बधाई। और बताते चलें कि कल रात द ग्रेट द गोट लियोनेल मेसी के पापा जॉर्जी मेसी का 68 साल की आयु में आज 68 देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। समूचे फुटबॉल जगत की ओर से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि। सुबह के 7:40 और 30 सेकंड आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी, शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin l'osso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un coup de prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds à potier 295 roupies.

0: без търка.
1: RM2.
2: एनुअल अब धीरे धीरे संडे मॉर्निंग जाग रही है। जो लोग सुबह सुबह उठ गए थे वो अब अपने काम में लगे होंगे। किसी के घर में चाय बन रही होगी, किसी के घर में ब्रेकफास्ट की तैयारी, कोई घर की साफ सफाई कर रहा होगा और कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि आज तो संडे है, थोड़ा और तो सोने दो। जो भी कर रहे हैं, एक बात याद रखिए कि संडे को सिर्फ गुजारना नहीं है, इसे जीना है। आज किसी अपने को बिना किसी वजह के कॉल भी कर सकते हैं आप। किसी को थैंक यू बोलना है तो बोल दीजिए, किसी से मिलना है तो मिल लीजिए, और अगर बस अपने साथ रहना है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। हर संडे को बड़ा प्लान बनाना ज़रूरी तो नहीं, कभी एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट, कुछ फेवरेट गाने और अपने लोग, बस इतना ही काफ़ी होता है। और मौसम, हमने देखा कि ये मौसम परिवर्तित तो हो रहा है, सो आपने जो कुछ भी प्लान्स बनाए होंगे इन्हें आप कैरी ऑन कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ फैंटास्टिक मोमेंट। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं जरूर जा सकते हैं, बट ये मौसम के अनुसार डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपसे कहेंगे बाय बाय, क्योंकि टाइम भी हो चला है मेरी जाने का। मेरे बाद आपको मिलेगा परी का साथ, एंड यस, हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी, नेक्स्ट सैटरडे या उससे पहले, पता नहीं, लेकिन मुलाकात जल्द ही होगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, एंड हमेशा आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड रहिए। हैव अ वंडरफुल संडे अहेड।
0: टाइमलेस तड़का,
1: आरएम2,
0: टाइमलेस तड़का।

सबको एक नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। 30 जुलाई के ऑनलाइन जारी एगो रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ई बतैलन कि अप्रैल से जून के बीच उ धोखाधड़ी और उ मनी लॉन्डरिंग के मामला में 2.79 जांच शुरू करलन और 14 जना के गिरफ्तार करलन। ई बखत में कुल 780 शिकायत के समीक्षा करल गल। FCC के बगल से मॉरिशस में साइबर धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज करल गल। कोर्ट ऑफ असाइजेस के बगल से जोसेफ जैक्सन लुई के 8 बरिस के कैद और 50,000 रुपया के जुर्माना के सजा सुनावल गल। 400 ग्राम से जस्ती हशीश रखे के दोषी पावल गल। अदालत ई फैसला गल सुक 7 अगस्त के सुनैलन। ऑनलाइन जारी एगो दूसर रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के है जे हमने के देश के अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस परी अपन सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करलन जे साल 2015 से 2025 के बखत के कव करेला। ये रिपोर्ट में कारखाना के बंद होवे से अघिये दिखल गल झुकाव के पहल का आधिकारिक आकलन पेश करल गल। महामारी के दौर के छोड़ के लुगा के उद्योग में रोजगार में बड़का गिरावट आल बाती। दूसर देश में मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान एगो ऐतिहासिक सुरक्षा समझौता पर ही हस्ताक्षर करलन। इस समझौता के नेतो शैली नियन बतावल जाता। एकर मतलब यह कि एगो देश पर

0: हमला हुए पर तीन गो देश पर हमला मानल जाया। विश्लेषक लोगन के अनुसार ई नवा सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान के रोके के, अमेरिका पर घटल निर्भरता के पूरा करे के और इजराइल के संदेश देवे के उद्देश्य से करल गल। तेकरवे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समा भल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद, नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Express Tadka
1: RM2.
2: So well friends, Sunday morning और सुबह के 8:07 हो चुके हैं. It's 9th of August और मैं हूँ पेरी.

0: आपके साथ टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटीफुल मेलोडीज जो सिर्फ गाने नहीं है लेकिन उनके साथ ऑफ कोर्स कुछ मेमोरीज भी साथ जुड़ी हुई है सो फॉर द संडे मॉर्निंग आपके लिए लोड्स ऑफ गुड विशेस एंड बहुत सारा प्यार टू स्टार्ट विद वी हैव दिस भोजपुरी गाना और इसके साथ अब मूड तो सेट हो गया है वीकेंड वाला एंड अब के लिए जानते हैं अभी के लिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स
2: On est tous winners.
3: आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड और अस्थिर हवाओं के कारण हमारे स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह पूर्वीय ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी आज सुबह ही ऊंचाई पर बारिश के चलते कोहरा भी छाया रहेगा जबकि दिन के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लांटों पर बरसात होगी हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं प्रवाह रेखा के उस पर लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच आज सूर्योदय 6:35 पर जबकि शाम सूर्यास्त 5:55 पर
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de Nature's Juice à 76,95 et le pack de 24 rouleaux de papier toilette Winners à 369,95. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners!
4: RM2
1: Radio Musti
4: Feel the

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: So well friends, that was a beautiful song. Adnan Sami ka gaya hua ye gana picturized on Adnan Sami and Mahima Chaudhary. Aur isi gaane ke saath set kar rahe hain aapka Sunday morning mood. Aur abhi ke liye aur kuch khas aapke liye. It's time to play a game jahan par aap jeet sakte hain shandar inaam. Khele MBC aur Rajasthan Works ke saath and stand a chance to win 4 entry tickets and 1 food coupon for the Jain's Little India Shahi Thali, jise aap enjoy kar payenge at Utsav India Mauritius Shopping Carnival. डिटेल्स देंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन अगर इस इनाम को आप जीतना चाहते हैं, वी हैव अ सिंपल प्लेन, बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए. अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं, इट्स टेकन फ्रॉम द फिल्म जन्नत, गाया है इसे के ने. फिल्म में नजर आए थे इमरान हाशमी और आपको हमें बताना है कि इस फिल्म में उनके ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आई थी. बात हो रही है फिल्म जन्नत की, इमरान हाशमी के ऑपोजिट कौन सी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नजर आई थी. योर राइट आंसर 5499-1294 पर, 5499-1294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट. चलिए दोस्तों, से ये गाना चल पड़ा फ्रॉम द फिल्म जन्नत और इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल. के का गाया हुआ ये गाना और इस फिल्म में नजर आए थे इमरान हाशमी. सवाल बस यही है कि इनके ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आई थी. चलिए, ऑल द बेस्ट एंड वेटिंग फॉर राइट आंसर्स.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: ख्वाबों में तो इरादों में तू है चलिए दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म जन्नत और इसी से जुड़ा हुआ था हमारा सवाल आपको हमें बताना था इस फिल्म में इमरान हाशमी के ऑपोजिट कौन सी खूबसूरत एक्ट्रेस नजर आई थी एंड यहां पर क्या बात है सभी के सभी सही जवाब आए हैं सो वी हैड टू डू अ लकी ड्रॉ और लकी ड्रॉ के बाद जो नाम सामने आया है आप है सिद्धेश्वर नाथ नंदलाल और आप है मोंदाल बेसे दिया है आपने हमें बिल्कुल सही जवाब कांग्रेचुलेशंस सो वेल सिद्धेश्वर नाथ जी आपने दिया है सही जवाब खेला आपने एमबीसी राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट एसबीआई सीसी पार्क मदद से लेकर रात के 9 बजे तक साथ ही आप वहां पर एंजॉय कर पाएंगे फुल ऑन फैमिली एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल होम शॉपिंग होने वाला है साथ ही एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शोज लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपियरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश कैनमा का शो होगा ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल एज वेल सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड सो कंग्रेचुलेशंस सिद्धेश्वर नाथ जी आप बन गए हैं हमारे लकी विनर और वेल जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया तहे दिल से आपको कहेंगे थैंक यू जीतने के मौके और भी मिलेंगे बिकॉज ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का और मैं हूं परी आपके साथ हो जाइए नेक्स्ट गाना आप सभी के नाम

एंड दिस वन गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम, क्योंकि जब आप साथ होते हैं तो हमें लगता है एवरीथिंग इज ऑल राइट. आपका प्यार, आपका साथ, इट्स ऑलवेज स्पेशल. सो दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द स्पेशल पीपल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंजॉय दिस वन. गुड मॉर्निंग.

और चलिए यहाँ पर वीना जी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं मॉर्निंग में अच्छे गाने सुनने को मिल जाए तो मूड सेट हो जाता है। सो आई एम श्योर कि इन गानों के साथ आपकी मॉर्निंग तो एकदम मस्त हो रही है। वैसे अभी तो है रिलैक्सिंग मॉर्निंग बिकॉज आज है संडे, सो एंजॉय द टाइम। एंड यहाँ पर जाना जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं, जुड़ गए हैं हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ, आपका प्यार हम तक पहुँच गया है, सो थैंक यू सो मच। गाना होगा आपके सभी लव्ड वंस के नाम, गोज आउट फॉर रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, युविक, ऋषि, शिवसरन परिवार फ्लैग से साथ दे रहे हैं, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू। यहाँ पर कविता जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं, गुड मॉर्निंग विशेज आपके नाम, और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर हबी प्रकाश, उन्हें विश करना चाहती हैं लवली मॉर्निंग। इस वक्त काम पर हैं और उनकी मॉर्निंग को स्पेशल बना रही हैं रेडियो मस्ती के साथ।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: अंदर के लिए मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं सोनू निगम की आवाज एक रोमांटिक सा टच फॉर दिस संडे मॉर्निंग एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चलिए दोस्तों आपका वार्म वेलकम कर रहे हैं अगर अभी अभी मीठी नींद से जागे हैं सो गुड मॉर्निंग विशेस आपके लिए और साथ में गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती प्रीतम जी हमारा साथ दे रहे हैं आप सो गाना आपके नाम गोज आउट फॉर योर लवली वाइफ वर्षा कहते हैं कि इस वक्त शो को एंजॉय कर रहे हैं और छुट्टियों को भी यानी कि संडे को भी सो हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम गुड विशेस आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर स्वीट सा मैसेज टीना साथ दे रही हैं और हैप्पी संडे टू ऑल रेडियो मस्ती लिसनर्स कहते हैं दैट सभी जो लव्ड वंस हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के नाम डेडिकेट कर रही हैं ब्यूटिफुल गाना सो दिस वन गोज आउट फॉर यू माई डियर और सभी हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं संडे की सुबह है हैव अ ग्रेट स्टार्ट थोड़ा सा रिलैक्स थोड़ा सा चिलैक्स एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती

And well, friends, with this track, हम बढ़ने वाले हैं next hour की ओर. Sunday morning connected हैं आप रेडियो मस्ती के साथ. Good music continues समाचारों के बाद. So stay well connected. That's your timeless तड़का. मैं हूँ परी आपके साथ सुबह के 11 बजे तक.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, exactly 9 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। FCC ने मॉरिशस में साइबर धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स और बैंक के डेटा की चोरी। निर्यात उन्मुख उद्योगों में श्रमिक उत्पादकता में 9.9% की वृद्धि को लेकर अर्थशास्त्री एरिक निंग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। इस क्षेत्र में उत्पादन में 1.3% की गिरावट आई जबकि रोजगार में 10.2% घटा है। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार जब नौकरियां और कर्मचारियों की संख्या घटती है तो उत्पादकता का आंकड़ा अपने आप बढ़ा हुआ दिखने लगता है। वस्त्र उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव में है। बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मॉरिशस में श्रम लागत बढ़ गई है। अदालती कार्रवाई की बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने का दोषी पाया गया। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिमी कनाडा में 20,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया। तेजी से फैलती जंगल की आग ब्रिटिश कोलंबिया की ओका नागन झील के किनारे बसे कस्बों की ओर बढ़ी और रास्ते में आने वाले घरों को नष्ट कर दिया। समरलैंड में रहने वाले लगभग 12,000 लोगों और पास के पिचलैंड व उसके आसपास के इलाके में रहने वाले करीब 8,000 लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। एसएसओ रोड अपावेल में 64 साल की 64 years old की मिसिस बीबी फजीला मुसुफिया। मिसिस बीबी फजीला

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Express तड़का
1: RM2।
2: So, well, friends, सुबह के 9:08 and that was a beautiful song to start with. Yes, it's your timeless तड़का. और आपके लिए हम लेकर आए हैं ये मॉर्निंग शो जहाँ पर यादों का स्वाद होता है और कुछ मेलेडीज ऐसी जिसकी खुशबू शायद आपको कुछ खास यादें याद दिलाती हैं. Well, friends, अभी के लिए जो गाना हमने चलाया, it was a special reminder that we live only once और इसे खुलकर जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर बार हम बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन कर देते हैं. कभी कभार सोचते हैं कि खुश रहेंगे लेकिन बाद में, ट्रैवल करेंगे लेकिन बाद में, अपनों को टाइम देंगे लेकिन बाद में, या फिर बस खुल कर जिएंगे लेकिन बाद में. लेकिन यही तो हम कहते हैं दोस्तों, दैट टुमारो इज नेवर प्रॉमिस्ड. जो है वो बस आज ही का दिन है. सो हर एक दिन को आप स्पेशल बनाए यही सोचकर कि आज का दिन तो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला. Give me some sunshine, give me some rain. ये गाने के साथ हम बस आपको यही कहेंगे कि do make the most of it आज. जिंदगी मिलती है एक बार और उसे खास बनाना ये आप ही के हाथ में होता है. So well friends, सुबह के 9:09 मैं हूँ परी आपके साथ. Perfect timing 9:09 and 9th of August, यानी कि 9 का जो आंकड़ा है वो आ गया है और बस यही कहना चाहता है कि perfect start हुआ है आपकी morning का. अभी अभी आपने tune in किया है तो मैं हूँ परी आपके साथ on RM2 Radio मस्ती good music आपके लिए. आप भी connected है, so all you have to do is आपके messages, आपके dedications, आपके दिल का हाल 5499-1294 पर पहुंचा दीजिए मुझ तक. इसे बहुत ही प्यार से गानों से सजाकर हम पहुंचाएंगे आपके अपनों तक.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों, संडे की मॉर्निंग जहां पर आपको मिला है थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने का, थोड़ा सा टाइम लेट मॉर्निंग एंजॉय करने का, थोड़ा सा टाइम बेड पर थोड़ा सा और लेटे लेटे रिलैक्स करने का, और ये तो हम कहते हैं कि लाइफ के रियल ब्लेसिंग्स हैं। सो टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, कुछ हमारे दोस्त आज भी काम कर रहे हैं, सो लोड्स ऑफ करेज टू यू ऑल जो इस वक्त काम कर रहे हैं लेकिन साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती। अभी के लिए तो आ गए हैं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ टिल 11 AM ऑन रेडियो मस्ती। श्वेता हुकुम हमारा साथ दे रही हैं, आप बोनाकाय से डेडिकेट कर रही हैं, एक रोमांटिक गाना होगा फॉर हस्बैंड रोशन, और ये है उनकी बुबू रानी की तरफ से, और कहना है लव यू सो मच हस्बैंड जी। मॉर्निंग में रोमांटिक स्टार्ट, हस्बैंड जी हो गए हैं हैप्पी। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती जुड़ गए हैं यलेश, डेडिकेट करना चाहते हैं अगला गाना, ये होगा आपके पूरे परिवार के नाम। तो सभी शाम परिवार जो सुरनाम से हमारा साथ दे रहे हैं, नेक्स्ट वन फॉर यू एंड यलेश, विशिंग एवरीवन अ हैप्पी संडे एंड लोड्स ऑफ गुड विशेस टू एवरीवन जो कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ। चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है वो है लक्ष्मी का, आप है गुडलैंड से, कहती है कि कल भाई की गन और सिस्टर कविता, जी हाँ ये ट्विंस है और उनका बर्थडे था और पार्टी इज स्टिल गोइंग ऑन, बेस्ट विशेज एंड विशिंग देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लव यू बोथ, बहुत सारा प्यार कमिंग फ्रॉम पापा मामा सिस्टर्स लक्ष्मी एंड सेजल, ब्रदर इन लॉ संजीव, साथ में है नेफ्यू साहिल, अर्शद, अकेल, सभी की ओर से गुड विशेज टू दिस वंडरफुल ट्विंस, यस कीगन एंड कविता, आपने सेलिब्रेट किया है अपना बर्थडे, सो प्यार एंड स्पेशल विशेस दैट्स कमिंग फ्रॉम ऑल योर लव्ड वंस। रेडियो मस्ती टीम भी आपको विश कर रही है हैप्पी बर्थडे, बेलेटेड बर्थडे। और कहते हैं परफेक्ट लवी सॉन्ग्स एंड परफेक्ट संडे मॉर्निंग, और ऐसे में जो अगला गाना है ये होगा हमारी परफेक्ट सी प्यारी सी रोशनी के नाम, जो हमेशा आती है स्वीट मैसेजेस के साथ, एंड आपके मैसेजेस में वी कैन ऑल्सो फील दैट हैप्पीनेस एंड दैट स्माइल, सो बस थैंक यू सो मच, साथ देने के लिए शुक्रिया। साथ ही यहाँ पर आया है एक प्यारा सा मैसेज, कहते हैं खूबसूरत सी जिंदगी में खुशी आपके चेहरे पर बरकरार रहे, हम सदा यही चाहेंगे आपको खुशियों का नहीं खुशियों को आपका इंतजार रहे, कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से साथ दे रहे हैं आप, और डेडिकेटेड गाना सभी मनसुख परिवार के नाम। चलिए सो आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे खास एंड स्पेशल, लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आप भी कनेक्टेड हैं, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर।

सो वेल फ्रेंड्स, गाने तो चलते जाएंगे और आपका साथ ये भी तो जरूरी है. सो ये है आपका अपना रेडियो मस्ती. लाइक वी से दैट, जिंदगी में सिचुएशंस आते रहते हैं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अगर खुशियां हैं, गम है, तो जिंदगी जीने की वजह भी है. यही तो चीज़ें हैं जो जिंदगी को शायद थोड़ा सा और खूबसूरत बनाती है, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें जिंदगी में थोड़ा सा और होशियार बनाते हैं. और कभी कभार कहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, सिचुएशंस चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर अपनों का साथ है, अगर आपके साथ आपके निया एंड डियर वंस है, तो देन लाइफ इज ब्यूटीफुल. छोटी छोटी वजह ढूंढिए जिंदगी को खूबसूरत बनाने की. अभी के लिए हमारी वजह तो है आपका साथ, आपका प्यार. सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए ये गाना हम डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती, एंड वी हैव दिस गाना आप सभी के नाम, जानी तू या जानी ना, उसी फिल्म का एक क्वाइट पॉजिटिव सॉन्ग फॉर एवरीवन. हैप्पी संडे विशेस इसी गाने के साथ. हैव अ ग्रेट संडे मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे अहेड दोस्तों के साथ, अपनों के साथ. मेक सम ब्यूटिफुल मेमोरीज.

चलिए दोस्तों आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस क्या बात है लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट एंड यहां पर वी हैव अ स्वीट फैमिली जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवमी हमारा साथ दे रही हैं आप यहीं एमवीसी से और डेडिकेटिंग गाना फॉर सभी सहाय एंड सुंदर परिवार आपके सभी दोस्तों के नाम स्पेशली गोज आउट फॉर भाई बाबू भाभी वंदना सभी नायको परिवार के नाम स्पेशल विशेज ये है फॉर सासू मां सरस्वती और एक्चुअली सासू मां सावित्री जो हमारा साथ दे रहे हैं सो हैव अ वंडरफुल टाइम सावित्री जी और गाना आपके नाम सभी परिवार के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीना संजीता कात्र कोको से हमारा साथ दे रही हैं कहती हैं गाना हो जाए फॉर लवली बेबीज प्रत्युष दुर्वंश श्रीना आपकी मॉम रेणुका डैड मनोज सभी हरदयाल परिवार के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैप्पी संडे आप सभी को एंड लोड्स ऑफ लव टू लवली बेबीज साथ ही यहाँ पर अपारो परिवार कहते हैं रिलैक्स्ड इट्स अ संडे और इस वक्त कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ सो हैव अ ग्रेट टाइम हमारे अपारो परिवार हमेशा हमारा साथ देते हैं आप सो अगला गाना आपके नाम प्रीतम जी आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ आपकी लवली वाइफ वर्षा एज वेल तो सभी के नाम एक प्यारा सा गाना सभी परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल द वे फ्रॉम लाल माटी आए हैं देवसेन हमारे साथ जुड़ने के लिए सो गाना आपके नाम देवसेन

पास लवली संडे विशेस आपके लिए और गाना आपके नाम और चलिए यहां पर कहते हैं कि आज कजिन नीमा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं विशेस हैं फ्रॉम जॉ फिलिप मामा श्यामा एलिशा पूजा रक्षा एंड कचबोन से सभी परिवार लेकर आए हैं उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस साथ ही डेडिकेटिंग अगला गाना फॉर हबी केविन इस वक्त स्कूल हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं एजुकेटर है और एंजॉइंग द वेकेशन एंड वेल कहते हैं कि एक वीक का वेकेशन तो मैंने भी लिया है ताकि मैं टाइम एंजॉय कर सकूं उनके साथ एंड ऑफ कोर्स विद माय लिटिल प्यारी सी डॉटर रूही अभी इस वक्त संडे ब्रंच की तैयारियां हो रही हैं एंड हमारे साथ गानों को एंजॉय करते हुए आप अपना संडे एंजॉय कर रहे हैं यानी कि पूरा परिवार एक साथ हॉलीडे मोड ऑन एंड आई डोंट बिलीव कि इससे बेटर और कुछ हो सकता है सो मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज गाना होगा आपके नाम वेल यहां पर कहते हैं हेलो लवली बहना परी हेलो जी ललिता जी कैसी हैं आप अभी तो आप अपनी गर्मा गर्म कॉफी क्रिप बनाने एंजॉय कर रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं गाना सभी जीतन परिवार के नाम साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर मेधा मनीष श्रेया आर्य नील शीतल विकी रतीना नितिन संगीता मोटाई ब्रांच से हमारा साथ दे रहे हैं लॉन्ग लिस्ट सो बस ऐसे ही आपका प्यार आपका साथ बना रहे और कनेक्टेड रहे ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती गुड म्यूजिक कंटिन्यूज आप कहीं मत जाइए क्योंकि आपके लिए तो कर रहे हैं प्यारे प्यारे गाने इंतजार एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम सच्चा

So well friends, it's 9:53. मैं हूँ परी आपके साथ. It's your timeless तड़का और इसी खूबसूरत गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे थोड़ी ही देर में. बस आपके लिए कुछ और प्यारे गाने कर रहे हैं इंतजार. So stay connected. Enjoy your Sunday morning. Radio मस्ती के साथ.

0: FM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है। इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से देख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया है। महामारी के दौर को छोड़ करके भी वस्त्र उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस अवधि के दौरान श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की है। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर एमएसएम ने कल पोतलुई में सेंट्रस्ट में प्रेस को संबोधित किया। जोन जोग ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, इनमें फ्लक में हाल ही में हुई पार्टी का जुटाव, राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल रहा। विपक्ष के नेता के पद पर चेतन बाबूलाल की नियुक्ति को लेकर पुल बिरांजे ने कहा कि संविधान के अनुसार इस पर फैसला लेने का अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति को है। एबेन में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। पुल बिरांजे ने साथ ही बताया कि विपक्ष के विप के पद के लिए जोआना बिरांजे का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया कि उसने अपने हवाई और समुद्री क्षेत्र के पास चीनी सेना के 4 विमान, 6 युद्धपोत और 9 आधिकारिक जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया है, जिनमें से 2 विमानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान की वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ की है। इसी से ठीक एक दिन पहले शनिवार को भी 14 चीनी विमानों और 14 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 16 प्रोविडेंस गली क्वार्टर मिलिटेयर में, नंबर 16 प्रोविडेंस गली क्वार्टर मिलिटेयर में 69 साल की 69 years old की श्रीमती ध्रुवंती तपसी, श्रीमती ध्रुवंती तपसी जिन्हें पैदाशी नाम सुभ्रन की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 आज दिन के 11:30 उनके बेटे श्री हेमंत कुमार तपसी के घर नंबर 16 प्रोविडेंस गली कचमिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डू मास्का की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमशून टुडे एट 11:30 AM प्लेन दे जैसिनी सेंट्रल फ्लैक में, प्लेन दे जैसिनी सेंट्रल फ्लैक में 71 साल के 71 years old की जनाबा

0: कमलुद्दीन बदई, जनाब कमलुद्दीन बदई, जिन्हें सब लोग रफीक के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान प्लेन दे जैसिनी सेंट्रल फ्लैग से निकालकर दफनाने के लिए रिशमो का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Timeless Tadka
2: RM2
1: Timeless Tadka

और शहनाई के साथ हो गया है ऐलान कि होने वाला है शुभारंभ। संडे अगर अच्छे से बीत रहा है तो फिर पूरा हफ्ता अच्छा बीतेगा ही जरूर।

सो वार्म वेलकम कर रहे हैं आप सभी का सुबह के 10:08 संडे मॉर्निंग 9th of August परी का साथ एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती वार्म वेलकम

एग्जैक्टली अच्छे गाने चल रहे हैं तो आप भी सुनते रहिए बिकॉज ये है रेडियो मस्ती. अभी के लिए एक गाना ऐसा जो एकदम मस्ती भरा है. टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस वन. जुड़वा फिल्म का ये गाना आवाज है कविता कृष्ण मूर्ति कुमार असानो की. आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं संडे को और भी खास बनाने के लिए वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और उन्हीं गानों में शामिल होता हुआ ये गाना. साथ ही भूलेगा नहीं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपके दिल का हाल रहेगा इंतजार 5499-1294 पर.

0: FM 2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: без тарка.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों सुबह के 10:19 हो चुके हैं एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम. एक बार फिर आपके साथ हम खेलने वाले हैं एक खास गेम जहां पर आप खेले हमारे साथ यानी कि एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स के साथ और जीत सकते हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जॉइंस अ लिटिल इंडिया शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. सो इसे जीतने के लिए वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक अगला डायलॉग हम आपको सुनाने वाले हैं, एक डायलॉग फिल्म का डायलॉग आपको सुनाएंगे, अ वेरी फेमस डायलॉग, और आपको हमें बताना है कि ये जो डायलॉग है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है. सो दिल थाम कर बैठिए, अभी के लिए तो सवाल आ रहा है आपके लिए. एक खूबसूरत सा डायलॉग आपको सुनाएंगे, डायलॉग सुनकर आपको हमें इस फिल्म का नाम बताना है.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया. थैंक्स वेरी मच.
4: आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड.
3: आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है. Happy's ending. और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: So, काफी एक फेमस डायलॉग आपको सुनाया और एंड में सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है और अगर ठीक नहीं होता तो इट्स नॉट द एंड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आपको हमें बताना था कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है. And the right answer is Om Shanti Om. उसी फिल्म का ये डायलॉग और यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद निर्मला रामचंद आप है माला शो से बन गई हैं लकी विनर. Congratulations. So well, निर्मला जी दिया है आपने हमें बिल्कुल सही जवाब खेला एमबीसी राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है आपने 4 एंट्री टिकट्स. 1 फूड कूपन भी आपने जीता है फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगी एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट SBI CC5 सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. साथ ही आप क्या कुछ एंजॉय कर पाएंगे चलिए देते हैं आपको डिटेल्स. होने वाला है एक इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, अ लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का, कैनमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. सो निर्मला रामचंद माला शो से आप बन गई हैं हमारी लकी विनर. सो कांग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको एंड जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया तहे दिल से धन्यवाद फॉर पार्टिसिपेटिंग. जीतने के मौके मिलते रहेंगे. यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. तो चलिए दोस्तों इट्स योर टाइमलेस तड़का. मैं हूं परी आपके साथ. जावेद बशीर की आवाज में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी बिना निर्मला जी आपको कहेंगे आना होगा आपको MBC अपना गिफ्ट को कलेक्ट अपने गिफ्ट को कलेक्ट करने के लिए. मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पर आ सकती है सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक. डू ब्रिंग योर आईडिया अलोंग एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Timeless Tadka.
0: RM2.
3: So well friends, अभी के लिए it's time for a fashion tip. यहाँ पर कुछ fashion tips हम आपसे share करेंगे. So fashion सिर्फ कपड़े पहनना नहीं होता, अपनी personality को बिना कुछ कहे express करना होता है. So first tip ये है one hero piece rule, यानी कि अगर outfit simple है पर एक चीज इसे आप अपना hero बना सकते हैं. Oversized earrings, a classy watch, printed shrug या फिर एक statement heels. Simple clothes को एकदम outstanding बनाते हैं ये one standout piece. Effortless स्टाइलिश लुक आपको मिलता है विद इन सेकेंड्स. साथ ही कलर का मैजिक भी आप ट्राई कर सकते हैं. व्हाइट प्लस डेनिम फॉर एवर क्लासी. पेस्टल शेड्स जो हैं वो सॉफ्ट एलिगेंट और एक्सपेंसिव लुक देते हैं. और वहीं अगर दुपट्टा और स्कार्फ वाला हैक आप ट्राई करना चाहते हैं सो एक प्लेन कुर्ती को आप प्रिंटेड स्कार्फ या फिर वाइब्रेंट दुपट्टे के साथ पेयर कर सकते हैं. आउटफिट जो है वो तुरंत एवरी डे से बन जाता है वाव डे. सो इसे आप ट्राई जरूर कर सकते हैं. और मानसून विंटर स्मार्ट स्टाइलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे. सो लेयरिंग जैसे हम कहते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ लेयर्स ट्राई कर सकते हैं. लॉन्ग श्रग प्लस फिटेड टॉप प्लस जीन्स काफी अच्छा लगता है. डेनिम जैकेट के साथ मिडी ड्रेस जो है ये भी काफी स्टाइलिश लगती है. और कुर्ती प्लस बेल्ट प्लस एंकल बूट्स ये भी देता है आपको एकदम मस्त वाला लुक. सो ट्राई कीजिए ये कुछ फैशन टिप्स और बस स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड टू RM2 रेडियो मस्ती.
2: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों इट्स 10:48 और यहां पर चल रहा है आपका टाइमलेस तड़का जहां पर जैसे हमने कहा कि हर गाना एक इमोशन है और इस इमोशन को हम आप तक पहुंचा रहे हैं सो ऑलवेज कनेक्टेड म्यूजिकली आपके साथ ये है आरएम2 रेडियो मस्ती अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक सो बस कुछ और मिनटें बची हैं और तब तक के लिए आपके कुछ स्वीट मैसेजेस जो यहां पर आए हैं ऑन 54991294 अगला गाना होगा फॉर पुपू रीटा ऑफ गोंगोब कमिंग फ्रॉम रीना एंड बिसेसा फैमिली ऑफ बेल ए भेजा है प्यार आपने प्यारी सी पुपू के नाम साथ ही यहाँ पर अनुषा होरीराम साथ दे रही हैं आप लैंड द हॉर्स से कहती हैं कि आज मदर इन लॉ अमृता अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और सभी उर्राम परिवार की ओर से आ रही हैं स्पेशल विशेज हस्बैंड नंदन बेटा आदेश

बेटी वरुणा, दामाद धीरज, छोटा प्यारा बेटा गौरव एंड ऑल फैमिली जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए स्पेशल विशेज एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। साइट पर पहुंच गए हैं ऑन दिस संडे मॉर्निंग, क्या बात है, सभी दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं शो को। सो डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर सुखदेव, लाला, लालदेव, राजू, रॉबिन एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम श्याम दिबिचन एंड परिवार, सभी के नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन एंड थैंक यू सो मच स्टेइंग कनेक्टेड एंड एंजॉयिंग योर संडे। किशन रघुनाथ हमारा साथ दे रहे हैं सूरनाम से, अगला गाना डेडिकेट कर रहे हैं फॉर वाइफ माला रघुनाथ और उनकी दो प्यारी बेटियां जिया एंड रिया, सभी रघुनाथ परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं, गाना होगा आपके नाम एंड विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल फैमिली टाइम। और चलिए यहाँ पर टीना साथ दे रही हैं अभी, सो अगला गाना इसे बहुत ही प्यार से डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम, नॉट फॉरगेट, बस साथ दे रही हैं आप ऑन रेडियो मस्ती जहाँ पर कोशिश हमारी यही रहती है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपके लिए चलते रहें कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स।

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: सुबह के 11 बजे है. चलिए के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे अभी नमस्कार
3: निलमनी. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखे जाने पर दोषी पाया गया. अदालत ने ये फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया. ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है. इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम की है जो साल 2015 से 2025 की अवधि को कवर करती है. इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से दिख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया. महामारी के दौर को छोड़ करके भी वस्त्र उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट नोट की गई है. इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस अवधि के दौरान श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि भी दर्ज की है. 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 27 नई जांच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई. FCC ने मॉरिशस में साइबर धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है. इनमें मुख्य रूप से व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स और बैंक के डेटा की चोरी शामिल हैं. विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते को नेटो शैली का बताया जा रहा है जिसमें एक देश पर हमला होने पर 3 देशों पर हमला माना जाएगा. विश्लेषकों का कहना है कि ये नया सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान को रोकने, अमेरिका पर घटती निर्भरता को पूरा करने और इसराइल को संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है. और पश्चिमी कनाडा में 20,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया. तेजी से फैलती जंगल की आग ब्रिटिश कोलंबिया की ओका नागन झील के किनारे बसे कस्बों की ओर बढ़ी और रास्ते में आने वाले घरों को नष्ट कर दिया है. सम्मेलन में रहने वाले लगभग 12,000 लोगों और पास के पिछलैन व उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 8,000 लोगों को वहां से निकालने का आदेश दिया गया. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार. सिबरत लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में, सिबरत लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में 85 साल की 85 years old की श्रीमती मिमीम पात्रों, श्रीमती मिमीम पात्रों पैदाइश नाम जुलन, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दोपहर के 2:30 बजे उन्हीं के घर सिबरत लेन हॉलीवुड वाक कुआ नंबर 1 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 3 मील की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. कंदा लेन, रोज लेन बाउंड्री ट्रेफल, रोज हिल में कंदा लेन, रोज लेन बाउंड्री ट्रेफल, रोज हिल में 76 साल की 76 years old की श्रीमती मिनियामा इरप्पा, श्रीमती मिनियामा इरप्पा पैदाशी नाम कॉपेन और जिन्हें सब लोग अति के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के घर कांदा लेन रोज लेन बाउंड्री ट्रेफल रोज हिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कुडिगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 PM. इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North,
3: South,
4: 103.5,
2: East,
3: West,
4: 96.4,
3: Center,
4: 99.4.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: मस्त संडे मॉर्निंग है, आरएम टू रेडियो मस्ती ऑन गोइंग है। इस वक्त बॉली ब्रंच का सफर जारी है विद हर्मनी, जहां पर हम गानों के जरिए आपको टाइम ट्रैवल करवाने वाले हैं, कभी इधर तो कभी उधर। आप बस यही पर हमारे साथ जुड़े रहना, आरएम टू रेडियो मस्ती पर है। जल्द ही 11:11 होने वाला है, डोंट फॉरगेट टू मेक अ विश।
0: बॉली ब्रंच आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musties.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: इश्क शवा मुश्क शवा, यहाँ पर हर तरह के शवा है, से शवा शवा, बस आपके मुख पर मुस्कान लाना है। दो बजे तक नीलमणि यही पर है आपके लिए। तो अगर आपके पास कोई भी डेडिकेशंस है, मैसेजेस है, आराम से आप टाइप कीजिए और भेजिए व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए 5499-1294 पर। आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए एंजॉय करती हैं गुड म्यूजिक को आपके ही आरम टू रेडियो मस्ती पर।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: गीतों में जिंदगी है, क्या ही बात कही है। सच में म्यूजिक ही हमें अलाइव रखती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर संगीत ना हो तो क्या है जिंदगी। तो जिंदगी को ताल में लाने के लिए और एक गाना हो जाए आपके नाम। एंड वैसे आपके मैसेजेस के इंतजार है 5499194 पर।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: बॉली ब्रंच
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यस, बॉली ब्रंच का सफर है ना, आपको पता है दोस्त, आज है मेलन डे। गर्मी तो नहीं है, लेकिन अगर कूल डाउन करने की सोच रहे थे, वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, जो भी आपके फेवरेट है, आज एक हेल्दी रिफ्रेशिंग स्लाइस तो बनता है। और हाँ, हाइड्रेशन का भी ध्यान रखिए, बॉडी को भी चाहिए थोड़ा सा प्यार। तो पानी के साथ साथ हेल्दी जूस भी बनाकर पी सकते हो। और ऊपर से वीकेंड है, अगर कुछ ऐड करना है, बेझिझक यू ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड एंजॉय विद योर RM2 रेडियो।
0: Body Brunch,
1: RM2, Radio Masti.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 47 नई जांच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। एफसीसी ने मॉरिशस में साइबर ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स, बैंक के डेटा की चोरी। ऑनलाइन जारी इस रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस पर एक समीक्षा की। संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो 2015 से 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से दिख रहे रुझान का पहला आधार एक आंकलन प्रस्तुत किया गया है। महामारी के दौर को छोड़कर भी वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइज़ जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने के लिए दोषी पाया गया। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। और ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया कि उसने अपने हवाई और समुद्री क्षेत्र के पास चीनी सेना के 4 विमान, 6 युद्ध पोत और 9 आधारिक जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया है, जिसमें से 2 विमानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ की है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। सिबारत लेन ओलीहुद नंबर एक वाकवा में 85 साल की की श्रीमती मिमिन पात्रों पैराशी नाम झूलन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर ढाई बजे उनके मकान सिबारत लेन ओलीहुद नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2:30 PM। नंबर 14 गायतों मॉर्टिन स्ट्रीट थोंगपो पोर्टलुई में 74 साल की 74 की श्रीमती गंगाराम बिडवंती जो फेना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके पति गंगाराम दादा के मकान नंबर 14 गास्टों मॉर्टिन स्ट्रीट थोंगपो पोर्टलुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। कथबो रोड बोनाकई में 83 साल की 83 अजोल्ड की श्रीमती परमावती भिकारी पैराशी नाम रामदयाल और जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान कथबो रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: बारह बजकर दस मिनट हुए हैं। बन अपेती अगर आप इस वक्त लंच कर रहे हैं या फिर बिजी हो कुछ स्पेशल कुक करने में, चेरिश कीजिए इन प्यारे लम्हों को अपने लव्ड वंस के साथ। है निमनी यहीं पर है दो बजे तक साथ देने के लिए आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही। एंड अगर आपके पास कोई स्पेशल गाना है जो आप चलाना चाहते हो किसी स्पेशल इंसान के लिए, या फिर किचन में हो कुछ स्पेशल सुनने का दिल कर रहा है, तो डू नॉट हेजिटेट। G5499124 पर इट्स योर बॉलीवुड शो।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC पाए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC पाए मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
3: Communiqué de la CWA. Face à la baisse inquiétante de nos réserves en eau, de nouvelles mesures entrent en vigueur à partir du lundi 10 août 2026. L'utilisation de l'eau potable est désormais strictement encadrée. Interdiction de remplir les piscines, d'utiliser des nettoyeurs à haute pression ou de laver des véhicules avec de l'eau potable dans les centres de lavage. L'irrigation sera autorisée uniquement pour les champs de légumes. La police veillera à ce que ces restrictions soient respectées à la lettre. Ces mesures sont essentielles pour préserver notre eau aujourd'hui et pour les jours à venir. C'était un message de la Central Water Authority.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: वैसे हर रोज कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हम. ऐसे ही आज है इंटरनेशनल को वर्किंग डे. आज के ज़माने में काम सिर्फ एक ऑफिस डेस्क तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है. कभी कभी कैफे, कभी वर्किंग स्पेस, कभी घर का डाइनिंग टेबल ही ऑफिस बन जाता है. लेकिन जगह कोई भी हो, आइडियाज शेयर करते रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए. और याद रखिए कि ग्रेट वर्क्स ऑफन हैपन्स जब ग्रेट माइंड्स साथ में मिलकर काम करते हैं. आज तो वीकेंड है, कोई नहीं, आप कल विश कर लेना अपने कलीग्स को इंटरनेशनल को वर्किंग डे के बारे में. फॉर नाउ वी डाइवर्ट बैक विद द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह आपके ही बॉली ब्रंच में.
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: Party Brunch RM2 Radio Masti.
1: बारह बजकर 41 मिनट हुए और कनेक्टेड है हमारे साथ ललित जी मैसेजेस के जरिए. वो बोल रहे हैं कि गाने बहुत अच्छे हैं, शो भी नाइस है और मैसेज अपनी प्यारी पत्नी के लिए, वो उन्हें बहुत मिस करती है और एक गाना मांग रहे हैं उनके नाम के लिए. गाना क्या नाम है? धोलना और रही बेबी मूवी से है. धुनकर चलाएंगे जरूर आपके लिए. एंड साथ में कनेक्टेड है हंस, हमारे दोस्त जो अभी काम पर है लेकिन गाने नॉन स्टॉप सुन रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती पर. वो सो हैव यश ऋषभ जो साथ दे रहे हैं ड्राइव करते समय. सो ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, वाइब कीजिए इस नेक्स्ट ट्रैक के साथ.
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: बराबर कर 55 मिनट हुए हैं, कुछ देर में संक्षिप्त समाचार होगा, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी आरएम2 रेडियो मस्ती पर।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Good afternoon, it's 1 p.m. संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता नमस्कार
5: नमस्कार नीलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दुनिया भर में भूखमरी की स्थिति में भले ही मामूली सुधार हुआ है लेकिन सैकड़ों मिलियन लोग अब भी पर्याप्त भोजन के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले महीने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की ओर से जारी विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। अफ्रीका में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने हालात को और गंभीर कर दिया है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए मॉरिशस के झरने लोगों के पसंदीदा स्थलों में शामिल हैं लेकिन यहां जाना जोखिम से खाली नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में मॉरिशस के झरनों में डूबने से 13 लोगों की जान जा चुकी है। मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस और पेशेवर गाइड्स सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस ने बचाव अभियान का एक प्रदर्शन भी दिया।

0: जिसमें डूबने की स्थिति में अपनाए जाने वाले सही तरीकों को दिखाया गया। बचाव कर्मियों का कहना है कि बिना किसी उपकरण या प्रशिक्षण के पानी में कूदकर किसी को बचाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाने वाले व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ट्रेनिंग से जुड़े पेशेवरों के अनुसार इन प्राकृतिक स्थलों के प्रति लोगों का बढ़ता आकर्षण अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ उचित तैयारी और सावधानी भी जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए बदलावों की तैयारी चल रही है जिनका असर स्कूल पाठ्यक्रम पर पड़ सकता है। नए विषयों को शामिल करने, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने और तकनीकी शिक्षा की विभिन्न धाराओं को विकसित करने के वास्प के प्रस्तावों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर संबंधित पक्षों और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच रणनीतिक बैठक हुई। ये बैठक मीडिया रिव्यू के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बेहतर ढंग से तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी स्पेन के नेबला क्षेत्र में कल दमकल कर्मियों ने जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया। आग के चलते 340 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार ये आग कल दोपहर हुएल्वा प्रांत में लगी और देखते ही देखते कम से कम 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। और उधर कनाडा के पश्चिमी हिस्से में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तेजी से फैल रही जंगल की आग ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। हालात को देखते हुए प्रांतीय सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। आग के कारण ओकानागन झील के आसपास स्थित इलाकों से 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। रूट जू क्लब वाकुआ में 81 साल के 81 years old की श्री वुग्राचन मितु, जिन्हें जगदीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। लिस्पेरेंस ट्रिबुशे आनंद रोड लिस्पेरेंस ट्रिबुशे में 57 साल की 57 years old की श्रीमती महालक्ष्मी पुनित पैदाश्राम सालांदी और जिन्हें रेखा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके घर लिस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। स्कूल लेन कुतेज में 64 साल की 64 years old की श्रीमती मानती बीकन पैदाश्रम रामनारायण और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:00 उनके पति देवानंद बीकन के घर को तेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। कांडा लेन रोज लेन बाउंड्री ट्रेफ रोजिल में 76 साल की 76 years old की श्रीमती मिनियामा इरापा पैदाश्रम कॉपेना, जिन्हें आती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर ट्रेफ रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदिगौत की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: ऐसे ही पहुंच गए हैं हम तीसरे और आखिरी आओ में. इट्स नमनीनो बॉली ब्रंच. 1:10 हुए हैं और एक अमेजिंग गाना आपके नाम करती हूँ दिस ब्यूटीफुल संडे स्नेहा की आवाज में आपके लिए पिया इंडी पॉप कैटेगरी की तरफ से है.
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: बॉली ब्रांच
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।
2: क्या है दिल की मुश्किल? अरे मुश्किलें बस दिमाग में होती है। अगर किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढना है तो बस शांत दिमाग से ही हो सकता है। वैसे आज है इंटरनेशनल को वर्किंग डे एंड इसके साथ साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होल्ड हैंड्स डे। तो अगर आप अपनी स्पेशल समवन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, म्यूजिक चल रहा है, रोड लंबी है, यू नो व्हाट टू डू राइट, क्योंकि कभी भी प्यार जताने के लिए बड़े बड़े शब्द की जरूरत नहीं होती है, एक हाथ का साथ ही कह देता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एंड अगर आप दोनों अभी ड्राइव कर रहे हैं तो सेफ्टी फर्स्ट, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखिए और जब गाड़ी सेफली रुक जाए तब एक दूसरे का हाथ थामिएगा। आपके सफर में रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, साथ अच्छा हो तो हर जर्नी खूबसूरत बन जाती है। दिमनी यही पर है साथ देने के लिए RM2 वीडियो मस्ती पर। बस आप यही पर कनेक्टेड रहना हमारे साथ। N549 1294 पर आप अपने स्पेशल मैसेजेस या डेडिकेशंस भेज सकते हो हमें।
0: बॉली ब्रांच
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: Hi Brunch, RM2 Radio Masti.
1: एंड यस, आप कनेक्टेड हो चुके हैं बॉली ब्रंच के साथ. एंड संडे का सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज प्रोडक्टिव बनना है या ऑफिशियली कल से करेंगे मूड में रहना है. वैसे जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, डबल रिस्पेक्ट आपको. और जो अभी फिर से ब्लैंकेट के नीचे चले गए, आप भी जरूरी हो. बस रेडियो को ऑन रखिए, संडे को एंजॉय कीजिए और गिल्ट को मंडे यानी कि कल के लिए सेव करते हैं. राइट नाउ इस मोमेंट को जीते हैं साथ में विद योर RM2 रेडियो मस्ती.
0: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: वैसे कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, फील किए जाते हैं ना. जिस संडे का मूड है कुछ ऐसा ही है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा हैप्पीनेस है, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और दिल को डिसाइड करने दीजिए कि नेक्स्ट सॉन्ग के साथ क्या फील करना है.
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Hi Brunch, RM2, Radio Masti.
1: संडे आफ्टरनून का मूड ही अलग होता है ना. वीकेंड खत्म होने वाली है कुछ ही आवर्स में, लेकिन मंडे दूर नहीं. अभी थोड़ा वक्त है तो मंडे के बारे में सोचना बंद करते हैं. जो संडे बचा है उसे एंजॉय करते हैं. कल की कल देखेंगे. अभी के लिए मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन आप यही पर रहना है कनेक्टेड, क्योंकि हंसनी आने वाली है नेक्स्ट साथ निभाने के लिए. सो टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू योर RM2 रेडियो मस्ती.
0: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: to Radio Musti.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: Wish you all a very good afternoon. I check your time. It's already 2 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ। आपको नमस्कार अर्शिता।
9: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 1,00,000 युवा रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करती है। ये आंकड़ा शराब के दुरुपयोग और नशीली दवाइयों की लत की रोकथाम और उपचार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन डॉक्टर इदरीस गुमानी उपचार केंद्र से सामने आया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संगठन ने आज 9 अगस्त प्लेनवेयत इलाके की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशे की रोकथाम के महत्व पर जोर देना था। दुनिया भर में भूखमरी की स्थिति में भले ही मामूली सुधार हुआ है, लेकिन सैकड़ों

0: मिलियन लोग अब भी पर्याप्त भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले महीने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की ओर से जारी विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। अफ्रीका में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने हालात को और गंभीर बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए बदलावों की तैयारी चल रही है जिनका असर स्कूल पाठ्यक्रम पर पड़ सकता है। नए विषयों को शामिल करने, माध्यमिक स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने और तकनीकी शिक्षा की विभिन्न धाराओं को विकसित करने के प्रस्तावों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर संबंधित पक्षों और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच रणनीतिक बैठक हुई। ये बैठक मीडिया रिव्यू के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बेहतर ढंग से तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया में इस सप्ताह जिहादी समूहों की कैद से मुक्त कराए गए लोग अब अपनी आप बीती साझा कर रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग स्थानों से 308 लोगों को मुक्त कराया। इन लोगों का 6 महीने पहले अपहरण किया गया था। वहां की सरकार ने इस अभियान को नाइजीरिया के इतिहास में एक ही दिन में चला गया सबसे बड़ा बचाव अभियान बताया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड कांटोरेल में 70 साल की 70 years old की श्रीमती राजवंती पदारती पैदाशनम रुकना की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर कौतूहल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रूट जू क्लब वाकुआ में 81 साल के 81 years old के श्री वुग्राचन मीतू जिन्हें जगदीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। प्लेन दे जर्सिनी सेंटर दे फ्लैक में 71 साल के 71 years old के श्री कमालुद्दीन बदाई, ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। प्लेन दे जर्सिनी सेंटर दे फ्लैक में 71 साल के 71 years old के जनाब कमालुद्दीन बदाई जिन्हें रफीक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 2:30 बजे इनके मकान प्लेन दे जर्सिनी सेंटर दे फ्लैक से उठाकर दफनाने के लिए रिश्मों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
2: RM2 Radio Mastery.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: RM2 पर आपका वेलकम है. 2:11 हो चला है. दिस इज आवर आफ्टरनून वाला टाइम जहां पर हम कुछ गपशप करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ जो प्यारा सफर है

0: वो तय करेंगे 4 बजे तक. शुरुआत हो गई है फॉर प्ले एंड प्ले और यहाँ पर आ गई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. चलिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार. And I wish you all a happy Sunday, happy weekend, everyone. I wish you a very good afternoon. और एक बार फिर से दोस्ती को बढ़ाने के लिए आ गई हूँ मैं, क्योंकि हमारा ये मानना है सच्चा दोस्त वही होता है जो हालात बदलने पर नहीं बल्कि हालात बदलने की कोशिश में साथ दे. दोस्ती वो नहीं जो हर रोज बात करे, दोस्ती तो वो होता है जो दूर रहकर भी दिल के करीब रहे. इसलिए यहाँ पर जो दूरियाँ हैं उनको बस मिटाने की एक छोटी सी कोशिश हम करने वाले हैं इस म्यूजिकल सफर के दौरान. आई रियली होप कि सब कुछ ठीक है और अगर नहीं है तो अभी मूड को सेट हम करने वाले हैं विद द लाजवाब कलेक्शन. आई रियली होप कि जो हमारे चुने हुए गाने रहेंगे आप पसंद करेंगे. और है कोई अगर डेडिकेशन, है कोई अगर मैसेज जो किसी को आप पहुंचाना चाहेंगे, दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे, या फिर अदरवाइज सिंपली यहाँ पर यू वांट टू शेयर समथिंग स्पेशल टू सेलिब्रेट योर संडे नाउ अगस्त, सो बिल्कुल हम हैं आपके साथ. विल बी विद यू, साथ साथ ही रहेंगे ऑन 5491294 फॉर योर मैसेजेस आपके डेडिकेशन के लिए. सो जहाँ पर भी साथ जा रही है लेट अस एंजॉय वीकेंड. और साथ में आज इस शो के दौरान शकों को भी तो होने वाला है, दैट्स ग्रेट. यानी कि साथ साथ चलेगी हमारी प्यारी सी लेडी लक, घूमने वाली है हमारे संग इस शो में. तो किसके यहाँ जाएगी ये तो शो के बाद शो के बाद पता चलेगा कि किसके यहाँ गई है हमारी आज का लेडी लक. सो वी आर ऑल सेट फॉर अ सुपर्ब शो जहाँ पर भी साथ जारी है. इट्स अ वार्म वेलकम.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: track and play.
1: RM2.
2: जस्ट प्लग इन एंड प्लग आउट यहाँ पर जितने भी स्ट्रेस है बस इनको बाहर हम करेंगे और इन हो जाएंगे हैप्पीनेस, इन हो जाएंगे वो सुकून, वो प्यार। और वैसे तो दोस्ती का हाथ हमने बढ़ा लिया है, अब आपकी बारी है टू बी इन प्लग एंड प्ले। दिस इज अ वार्म शो जहाँ पर प्यार रहेगा अप टिल द एंड, अप टिल 4 PM यहाँ पर हंसनी रहेगी आपके साथ। एंड जैसे इशारा हुआ था ना, विल बी हैविंग अवर शो को, सो जस्ट गेट रेडी। एंड द गेम इज Powered by Rajasthan Works Limited, जहाँ पर आप MBC के साथ खेलेंगे Rajasthan Works के साथ और आप जीतने वाले हैं exciting prizes, stunner chance, यहाँ पे जीतने का मौका है 4 entry tickets and one food coupon for the Jane's Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC। शुरू होगा 12 अगस्त को और चलेगा से 16 अगस्त तक, यस फ्रॉम 12 ऑफ अगस्त टू 16th ऑफ अगस्त एट SBICC पाई आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM। वहाँ पर आपको जाना है टू एक्सपीरियंस 5 days ऑफ शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ फैमिली फन, जहाँ पर होने वाला है इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय द ग्रेट बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल, ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैकेज है और बेशक ये चांस आपको दिए जाएंगे टू बी पार्ट ऑफ द उत्सव जो होने वाला है 12 अगस्त को शुरू होगा, तो वहाँ पर जाइए जरूर। इससे पहले एक क्वेश्चन के साथ आपका सही जवाब आएगा। तो यहाँ पर आई टेक यू इन द ईयर 2013 एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी दैट वाज डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी और नजर आए थे आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर। एक ऐसी मूवी जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013 डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, नजर आए थे आदित्य रॉय कपूर और साथ में थी द ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर। और उस मूवी में वी हैड द कैरेक्टर्स ऑफ राहुल, जयकर एंड आरोही। हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोज तो हमने आपको बता दिया है ना, इजी गेम है, इजी शकों को है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सब आप पार्टिसिपेट करें अगर आप फ्री हो तो। ड्राइव करते समय आप मोबाइल फोन को यूज ना करेंगे लेकिन फ्री टाइम में जरूर पार्टिसिपेट करें ऑन 5499-1294। यहाँ पे हंसनी है वेटिंग फॉर यू सही जवाबों के लिए। सो चलिए मिलकर टीम के साथ हम आपको विश करते हैं ऑल द बेस्ट।
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वैसे जो आपको करना था दैट वाज वेरी इजी टू गिव मी द राइट आंसर. यहाँ पर सवाल जो था अभी एक ऐसी मूवी जो आई थी इन द ईयर 2013 और नजर आए थे आदित्य रॉय कपूर आज राहुल जयकर एंड श्रद्धा कपूर आज आरोही. हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे थे? दैट वाज आशिकी 2. यस, कई सही जवाब मिले हैं लेकिन कई तो कह रहे थे एक विलेन लेकिन उस मूवी में नजर आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा. राइट, श्रद्धा कपूर थी लेकिन एक्टर तो सिद्धार्थ था और आशिकी 2 में दैट वाज आदित्य रॉय कपूर. तो यहाँ पे सही जवाब देकर कौन बन गई है इन द लकी ड्रॉ आज लकी विनर. लेट्स गो एंड

और यहाँ पर लकी विनर का नाम तो रितेश गोपाल है और वो तो वाकवा के रहने वाले हैं. ब्रावो रितेश, आपकी जीत हो गई है. कंग्रेचुलेशन टू यू. डेफिनेटली आप ले जा रहे हो 4 एंट्री टिकट्स एंड यस 1 फुल कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली जो आपको मिलेगा एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC आज फ्रॉम 12 अगस्त अप टिल 16th ऑफ अगस्त एट SBICCPI. शुरू होगा सबसे बड़ा उत्सव फॉर दिस ईयर आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड, जहां पर आपको 5 दिन के ढेर सारे यू नो एंटरटेनमेंट होने वाला है. शॉपिंग्स आप कर सकेंगे एंड दैट विल बी लॉट्स ऑफ फैमिली फन. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल आवर टीम.

और अभी के लिए यार शकीतु मूवी जो बिल्कुल सही जवाब आया है तो व्हाई नॉट एक रोमांटिक गाना हो जाए. इस गाने में जो स्पेशल ट्रैक है प्यार करने वालों के लिए हमने यही चुना है. आई रियली होप यू विल एंजॉय. तो ये हम डेडिकेट करने वाले हैं आपके उस आशिकी के लिए जिनको याद करके बस आप मन ही मन मुस्कुरा लेते हो.

0: plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती और टाइम हो चला है टू गेट टू नो कि क्या कुछ आपके यहाँ हो रहा है. एन्जॉइंग योर टी टाइम, एन्जॉइंग योर संडे, एन्जॉइंग वीकेंड परिवार के साथ कुछ वक्त, बच्चों के साथ एक स्पेशल टाइम, अभी और एक वीकेंड, इसके बाद स्कूल फिर से शुरू हो जाएगा फॉर द थर्ड टर्म. लेकिन अभी फुल ऑन हॉलीडेज है ना, तो बच्चों के साथ एंजॉय करें एक स्पेशल धमाकेदार टाइम. और हम तो है ही आपके साथ, तो मेक इट फन. रोमांटिक गाने, कुछ ऐसे गाने जो आपको पसंद आए. दिस इज योर म्यूजिकल सफर अप टिल 4 PM, जहां हम सुनी है जो आपके साथ बिल्कुल दे रही है एकदम मस्त होके. जब भी हम यहाँ पर आते हैं, आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि यहाँ पर मूड एकदम मस्त हो ही जाता है. सो अभी कुछ मैसेजेस हो जाए. हाँ जी बिल्कुल, कहाँ से आवाज़ आई है? स्विट्जरलैंड से आवाज़ आई है. अजी वाह, दूर होते हुए भी रेडियो के इतने पास वो रहते हैं. हेलो जवंतीश, कैसे हो जी? और खाना बन रहा है या फिर बन गया है या फिर आप बना रहे हो, सिचुएशन कैसी है जानकर खुशी होगी. सो बिग हेलो टू यू अंतीश, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपका जो फोटो आया है ऑन द न्यूज़पेपर, सपोर्टिंग मॉरिशस एज ऑलवेज, सो प्राउड टू बी मॉरिशियन, यही आपका मैसेज है एज ऑलवेज. तो यहाँ पर गाना एकदम आपके लिए मस्त हो जाएगा, फॉर यू और इस सब परिवार के लिए जो यहाँ पर कनेक्टेड है टू एंजॉय प्लग एंड प्ले. शैलेश कुमार का साथ है फ्रॉम कैटरबोन, एंजॉयिंग द शो वेरी मच. और आज मेरी जो बीवी है सुनीता, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू हर. हैप्पी बर्थडे टू सुनीता जी. गाना है फ्रॉम बेटी दिया और साथ में है उनके दामाद शुभम और सब परिवार उनके यहाँ है एंजॉयिंग अ नाइस फैमिली टाइम. तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि उनका नाम रेडियो पे आए एंड टू मेक हर अ सरप्राइज. हैप्पी वाला बर्थडे टू यू, एंजॉय योर टाइम. नमस्ते हंसनी जी, नमस्ते टू यू डिया, कैसी हो डिया? यहाँ पर गाना आपके पति आवेश के लिए, फॉर टू लिटिल डॉटर्स मेघना एंड योशाना. इस समय यू आर एट द बीच राइट नाउ एंजॉयिंग रिलैक्सिंग, ये हुई ना बात. एंजॉय योर फैमिली टाइम. पोबला की रहने वाली जो हमारी प्यारी दिया आई है टू से हेलो टू एवरीवन. आप अभी अपनों को याद करें, दिस इज अ शो जहां पर हम फैमिली टाइम को और भी स्पेशल बना लेते हैं. आई एम वेटिंग फॉर यू 1059-1294 फॉर सम मोर डेडिकेशंस.
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: तेरी मोहब्बत का असर कुछ ऐसा हुआ कि अब हर चेहरे में बस तू ही नजर आया। तुझे चाहने की कोई वजह तो नहीं, बस दिल ने कहा और तुझसे इश्क हो गया। तेरी आंखों ने कमा कर लिया है जस्ट लविंग द आईज वेरी मच और आई एम मिसिंग माई लव। ये है ऋषभ की तरफ से फॉर इस हम सफर जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो द रेडियो। तो यहाँ पर साथ देने के लिए शुक्रिया। ये खास गाना

तेरी आंखों में कुछ ऐसा नशा है कि हर पल बस तेरा ही ख्याल रहता है। तो पास हो या दूर फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल तो हमेशा तेरे पास रहता है। That was a beautiful one, romantic one, सभी प्यार करने वालों के लिए जो यहाँ पर strongly connected है on Radio Masti.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good afternoon, everyone. Now check your time. It's 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्षिता के साथ. आपको नमस्कार अर्षिता.
6: नमस्कार हंसिनी. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मॉरिशस में पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं. इन प्रतिबंधों के तहत कई गतिविधियों और क्षेत्रों में लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा. इनमें कौ वॉश सेंटर भी शामिल हैं, जिन्हें अब नए नियमों के अनुरूप काम करना होगा. देश में जल भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है. स्थिति को देखते हुए कुछ कौ वॉश संचालकों ने पहले से ही वैकल्पिक उपाय करना शुरू कर दिया है. इनमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना एक प्रमुख विकल्प है, ताकि काम जारी रखते हुए पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव को कम किया जा सके. मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है, जिसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होते हैं और जो देशों की सीमाओं से परे फैली हुई है. मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों को गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की ओर से सहायता और देखभाल प्रदान की जा रही है. इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं. वहीं 21 अन्य मामले पुलिस की जांच या कार्रवाई के अधीन है. हालांकि मॉरिशस में मानव तस्करी की समस्या अभी सीमित स्तर पर है, लेकिन इससे निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हैं. इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. मॉरिशस में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 1,00,000 युवा रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं. ये आंकड़ा शराब के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की लत की रोकथाम और उपचार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन डॉक्टर इद्रिस गुमानी उपचार सेंटर से

सामने आया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संगठन ने आज 9 अगस्त को प्लेनवेत इलाके की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशे की रोकथाम के महत्व पर जोर देना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक अमरीकी कंपनी ग्रीनलैंड में बिना सरकारी अनुमति के तेल की ड्रिलिंग की तैयारी कर रही है। स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी के बिना ही ग्रीनलैंड एनर्जी ने जेम्सन लैंड क्षेत्र में अपने प्रस्तावित ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के लिए जरूरी उपकरण पहुंचा दिए हैं। हालांकि इस परियोजना के लिए आवश्यक आधिकारिक मंजूरियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं। और उधर यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका और एशिया तक जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये आग पहले की तुलना में अधिक विकराल होती जा रही है। स्पेन, सर्बिया और इंडोनेशिया के साथ साथ कनाडा में भी दमकल कर्मी ऐसी भीषण आग से जूझ रहे हैं जिस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। बढ़ती चरम औसत परिस्थितियां भी आग बुझाने में प्रयासों को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Hey, hey, क्या बात है? एक बार फिर से आंखों की तारीफ हुई है यहाँ पर for the beginning of the show. आंखों की जो गुस्ताखियाँ होती है, oh my god, जो आंखें हमारी होती हैं, कभी बहुत कुछ कह लेती हैं, जो ज़बान नहीं कह पाता, वो हमारी आंखें, वो feelings बयां कर लेती हैं. तेरी आंखों में वो कशिश है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. बस एक नज़र देख लो तुझे तो पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है. तेरी आंखों की क्या तारीफ करूं, इनमें तो पूरा आसमान नजर आता है. जब भी देखता हूं इन्हें करीब से, दिल बस तुझ पर ही ठहर जाता है. तो आंखों की ये जो खूबसूरती है वो तो बस बयां हो गई है. आप लोगों के आने से जो शान है वो कुछ और रंगीन हो गई है. This is a beautiful welcome to you all. यहाँ पर साथ निभाने के लिए शुक्रिया जी. This is Radio Masti. कमाल होता है यहाँ पर, magical सफर हो जाता है आपके साथ. और ये तो है Plug and Play का ये musical show जो चलेगा 4 बजे तक. अगर इस hour में आपने radio set को on कर लिया है, this is your musical सफर हम सनी के साथ. बिल्कुल happily होकर हम तय करेंगे, हम सफर बन जाएंगे. और उम्मीद है कि जो हमारे गाने हैं, यही आशा है कि आप पसंद कर रहे हो हमारे साथ. On this beautiful day, this is Weekend Wala Show. This is Plug and Play.
0: Plug and Play.
1: RM2.
0: Plug and Play.

0: plug and play.
1: RM2.
2: This is the musical show जहाँ पर बस खुश होते हुए यहाँ पर आपके साथ हंसनी and just being happy यहाँ पर आप लोगों का साथ जो इतना प्यारा है and we have सूरज भाई जो strongly connected है from Trioli आपका warm welcome है जी really hope कि सब ठीक है in Trioli right now he is listening and enjoying आज का plug and play वैसे हम तो कहेंगे जब दिल खुश है तो हर धुन अपनी से लगती है ना आज कोई

0: टेंशन नहीं, बस म्यूजिक, मुस्कान और सुकून. क्या ख्याल है, इक्वेशन बिल्कुल सही है ना? टू एंजॉय दिस वीकेंड, क्योंकि जिंदगी तो छोटी है, इसीलिए आज खुलकर मुस्कुराएंगे और अपना जो फेवरेट गाने हैं हम सुनेंगे ऑन आवर फेवरेट रेडियो स्टेशन जो है हमारा और आपका रेडियो मस्ती. मूड अच्छा हो तो एकदम जो हर एक पल है वो यादगार बन जाता है. और आज तो दिल कह रहा है बस गाना जो है हम बजाएंगे और जो मूड है उनको और भी मदमस्त बनाएंगे. और क्या चाहिए जब लाइफ इज सेट है और रेडियो मस्ती इज हियर टू ऐड ऑन सम मोर मस्ती, टू ऐड ऑन सम मोर लव. और प्यार और दोस्ती तो यहाँ पर एक हिस्सा है और आप अभी इस सफर के हिस्से हो. प्रशस साथ जो मिलता रहता है आपकी तरफ से, तो इसके लिए हम तो है शुक्रगुजार. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. यहाँ पर सफर जारी है अप टिल 4 PM.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: ये स्पेशल गाना था उन लोगों के लिए जो आज शादी कर रही हैं और जन्म जन्म तक ये जो बंधन है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ऑलवेज हॉनेस्ट सिंसियरिटी के साथ आप हर एक वचन को निभाएं. ये हमारी गुड विशेस हैं फॉर एवरीवन जो यहाँ पर कनेक्टेड है और अपने प्यार को बस याद करते हुए अपने शादी वाले दिन को याद करें. बस 7 years विल बी बैक. ये तो है प्लग एंड प्ले का कमाल. ऑलवेज वी डू ब्रिंग यू सम 7 years, चाहे प्यार के साथ हो, शादी वाला दिन या फिर अगर दिल टूटा हुआ है, ये भी 7 years हम लेकर आते हैं गानों के साथ. सो एनी हाउ, ये तो जिंदगी है, चल जाता है और अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं. हर पल में खुशियों को हम ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं. जो पल में खुशियों को चुनना सीखते हैं ना, जो मिला है उसी से दिल खुश रहे. यही काम अगर आप करेंगे अपने आप पर तो बस आप ढूंढ लेंगे वो जरिया टू बी हैप्पी. जिंदगी जो है ना एक खूबसूरत एहसास है, कभी खुशी तो कभी प्यार का साथ होता है. और पल को मुस्कुराकर जी लेना सीख लेना चाहिए क्योंकि यह जिंदगी का असली राज है. एंड वी आर हियर, आप बने हुए हो हमारे साथ हमराज हम सफर. और ये तो है प्लग एंड प्ले का ये म्यूजिकल सफर जो चल रहा है यहाँ पे 4 बजे तक. यूँ ही आप साथ निभाते रहिए. 3:44 PM इन मॉरिशस आफ्टरनून वाला टाइम है अभी. हेलो टू एवरीवन जो यहाँ पर साथ निभाते हुए बस दूर है अब रोड से भी इतना सारा प्यार आप लेकर आते हो, इसके लिए थैंकिंग यू सो मच. यहाँ पर गाना है फॉर अविनाश एंड सुनिधि के लिए. दे आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी आज. शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो जी. गॉड ब्लेस यू. और गाना एकदम रोमांटिक गाना आप सुनना चाहेंगे. ओके जी, ये तो चलेगा टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डेट. और ये रहेगा आप की तरफ से टू ऑल मंथा परिवार जो यहाँ पर कनेक्टेड है ऑन रेडियो मस्ती एंड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डेट. यहाँ पे जीना, हेलो टू यू, वेलकम इन द शो. क्या के साथ आप आई हो. जयसुरी परिवार का भी वेलकम है. थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल विशेस इस वीकेंड को लाजवाब बनाने के लिए. हाय नमस्ते टू एवरीवन. यहाँ पर ब्यूटीफुल गाने जो एंजॉय किया जा रहा है. और वी हैव सुरियाल परिवार, गजदो पुरन करिया, मंधा परिवार, लट्स ऑफ लव आई है. हमारी प्यारी सी दोस्त रीटा ऑल द वे फ्रॉम मिलानो, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू इन मॉरिशस. और जहाँ पर भी आपके परिवार जुड़े हुए हैं बस हम वहाँ पर चले आएंगे टू वेलकम ऑल योर डियर वंस. दिस इज आवर फैमिली शो. यहाँ पर प्यार है, ये खुशी है. लेट अस एंजॉय पीस एंड हैप्पीनेस आज के लिए टू सेलिब्रेट योर वीकेंड इन आज का प्लग एंड प्ले.
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन. यहाँ पे कुरमाई वाला गाना एकदम शादी वाला फील आ गया है. दिस इज रेडियो मस्ती. यहाँ पर हर एक ओकेजन के लिए हम लेकर आते हैं द बेस्ट ऑफ गाने. दिस इज प्लग एंड प्ले एंड अभी आई हैव गॉट द लास्ट राउंड. एक्चुअली दैट विल बी नॉट द नेक्स्ट, दैट विल बी लास्ट, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा. 4 बजे तक मुलाकात यहाँ पर हो जाएगी खत्म फॉर प्लग एंड प्ले. इसके बाद आएंगे और जी संजय लेकर आज का बॉलीवुड टकटकाटक. सो लेट अस हैव द नेक्स्ट राउंड फॉर योर मैसेजेस. हाय हंसनी, हेलो. स्विनल का साथ है. हर हर महादेव टू ऑल द महादेव भक्त. यहाँ पर विशिंग ऑल पायस श्रावण मास और आपके लिए

0: जरूर एक गाना तो बनता है ना सुनल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। यहाँ पे भाई श्रवण के लिए गाना, फॉर भाभी कृति, अभिनव के लिए, फॉर किया, नव्या और पूरे तिलक परिवार जो यहाँ पर आए हैं, सभी शिव भक्त के लिए भी एक गाना। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड यहाँ पर वी विश यू अ वेरी नाइस वीकेंड। हर हर महादेव टू यू ऑल्सो। वी हैव विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप तो हो फ्रॉम ब्राज़ील, एंजॉयिंग द शो, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड अभी आप फिशिंग के लिए जाएंगे, दिस इज़ योर हॉबी एक्चुअली। और हफ्ते भर के लिए कितना सारा काम होता है और ये जो वीकेंड आता है, डेफिनेटली इट्स अ ब्रेक, रूटीन से एक ब्रेक तो लेना ही चाहिए। तो विश यू अ ग्रेट फिशिंग एंड स्टे सेफ का मैसेज है फ्रॉम योर डियर वाइफी जो यहाँ पर जुड़ी हुई है विद द रेडियो, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, और नाम है उनका दिव्या। हेलो टू यू एंड वेलकम इन द शो। यहाँ पर गाना है फॉर बिपिन के लिए, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज, 45 इयर्स की हुई है। बिपिन साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, विशेस कमिंग फ्रॉम योर वाइफ श्वेता। साथ में है आपकी बेटी सेजल, आपके भाई है राजेश, आपकी भाभी गीता और पूरे परिवार आए हैं आपको बधाइयां देने के लिए। टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय योर स्पेशल दिन। जो हमारा दिन आता है साल में, वही हमारा सबसे खास दिन होता है, हमारा जन्मदिन होता है। और रेडियो मस्ती जो है हमेशा साथ निभाता रहता है टू मेक इट मोर एंड मोर स्पेशल। ऑलराइट, जाने का टाइम आ गया है और यहाँ पर 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद विल बी वेलकमिंग और जे संजय, ये जो लेकर आ रहा है नेक्स्ट शो, दैट विल बी आज का बॉलीवुड टकटकाटक। मिलेंगे जल्द हम सभी की तरफ से, इट्स अ गुड बाय टाइम, विश यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड जहाँ पर भी साथ जारी है। स्टे म्यूजिकल एंड स्टे सेफ।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: शाम के 4 बज रहे हैं। नमस्कार आदाब, सुनते समाचार आशिता जी के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।
6: नमस्कार संजय, आपको भी हर हर महादेव। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है जिसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होते हैं और जो देशों की सीमाओं से परे फैली हुई है। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों को गैर सरकारी संगठनों यानी NGO की ओर से सहायता देखभाल प्रदान की जा रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, वहीं 21 अन्य मामले पुलिस की जांच या कार्रवाई के अधीन हैं। हालांकि मॉरिशस में मानव तस्करी की समस्या अभी सीमित स्तर पर है, लेकिन इससे निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मॉरिशस में पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इन प्रतिबंधों के तहत कई गतिविधियों और क्षेत्रों में लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इनमें का वॉश सेंटर भी शामिल हैं, जिन्हें अब नए नियमों के अनुरूप काम करना होगा। देश में जल भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए कुछ कौवाश संचालकों ने पहले से ही वैकल्पिक उपाय करना शुरू कर दिया है। इनमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना एक प्रमुख विकल्प है, ताकि काम जारी रखते हुए पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव को कम किया जा सके। मॉरिशस में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 1,00,000 युवा रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ये आंकड़ा शराब के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की लत की रोकथाम और उपचार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन डॉक्टर इद्रिस गुमानी उपचार केंद्र से सामने आया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संगठन ने आज 9 अगस्त को प्लनवेयत इलाके की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशे की रोकथाम के महत्व पर जोर देना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक अमरीकी कंपनी ग्रीनलैंड में बिना सरकारी अनुमति के तेल की ड्रिलिंग की तैयारी कर रही है। स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी के बिना ही ग्रीनलैंड एनर्जी ने जेम्सन लैन क्षेत्र में अपने प्रस्तावित ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के लिए जरूरी उपकरण पहुंचा दिए हैं। हालांकि इस परियोजना के लिए आवश्यक आधिकारिक मंजूरियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: Music, Dr. Gatta.
4: RM2, Radio Musty.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रविवार की शाम 4:09 समय को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। आपकी संडे शाम संजय के साथ, आई होप कि बहुत अच्छी तरह से गुजर रही हैं ये वीकेंड आप सबों के लिए। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इन दिस म्यूजिकल जर्नी अभी से लेकर रात के 7 बजे तक टक टक टक संजय के साथ। और शुरुआत ही में लेते हैं ये प्यारा सा मैसेज छाया जी की ओर से, जो लिखती हैं कि आज उनके बेटे श्रेयस का जन्मदिन है और आज बेटे को उनके जन्मदिन के मौके पर लेकर गए कहाँ, गंगा तालाब, और वहाँ पर शिव जी के आश्रय में उन्हें यानी कि श्रेयस को माँ छाया, पापा सुबिराज और दीदी शैवी का आशीर्वाद मिला, बहुत लाड प्यार मिला और हमारी ओर से उनके लिए ये गाना भी चला। Feel free to drop me your messages on 549994।

0: एक चकचका डर
1: ओरिएंटेड रेडियो मस्ती.
2: It's a beautiful weather outside. The मौसम खिला सा है. उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन कल गंगा तालाब में काफ़ी ठंड था. 17 degrees centigrade. और उस हवा के साथ साथ तो ठंड का एहसास और भी कुछ ज़्यादा ही था. और कल रात की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैसेज भी आया है मना ओम प्रिया की ओर से, जो फ्रॉम पिची गाफ. ब्यूटीफुल नेम जी. देखते हैं कल हम शिव साधना में मिले आत गंगा तालाब. As usual, great experience. Happy to meet you there and so many of my friends. वो अपनी बात कर रहे हैं, dedicating next song for all the devotees that who came to Shiv Sadhana organized there, and especially for Yogini Sadhvi Divya Prabha. धन्यवाद संजी, आपको भी धन्यवाद मनु ओम प्रिया जी. माता पिता ने बहुत सोच समझ कर ये नाम रखा है आपके लिए. So we can get around, it's big bheera. And very nice vibration at Ganga Talab. और कल तो सोमवार है और श्रावण सोमवार के अंतर्गत बहुत भारी भीड़ लगती है. कल भी लगेगी सेकंड श्रावण सोमवार फॉर दिस ईयर. सो हमारी ओर से जितने भी लोग इस समय गंगा तालाब में हैं और लौट रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को शुभ यात्रा और हर हर महादेव.

0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: ब्यूटीफुल सिंगिंग फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मास्त्र। इसी बात पर ही ये गेम हो जाए। दिस गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। प्ले विद एमबीसी।

and Rajasthan Works and win exciting prizes, stand a chance to win 4 entry tickets and what coupon for the Jane's Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI and LIC, as from 12th August 2026 to 16th August 2026 at SBI CCPI, as from 10 a.m. to 9 p.m. Experience 5 days of shopping, entertainment and family fun featuring international home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion show, live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Sir Achan, Kanma show, blood donation camp, food festival organized by Event Works Limited. So, jitne wale ko mil khase honne wale hain 4 entry tickets and 1 food coupon for the Jane's Little India Shahi Thali. Aur isko hasil, in sabon ko hasil karne ke liye aapko hame bas ye batana hai. अपने करियर के दौरान अरिजीत सिंह को 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स हासिल हुए हैं. 1 इन 2024 फॉर द फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा केसरिया. लेकिन उससे पहले जब पहली बार के लिए अरिजीत सिंह को नेशनल अवार्ड मिला था, दैट वाज फॉर व्हिच फिल्म एंड व्हिच सॉन्ग. व्हिच फिल्म एंड व्हिच सॉन्ग, आपका जवाब अपने अपने नाम और अपने पते के साथ आप भेजिए ऑन 5499 12 94.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो कुछ समय पहले हमने आपसे सवाल किया था दैट हरजीत को दो बार नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, वन इन 2018 एंड द सेकंड वन इन 2024 में इट वाज फॉर द सॉन्ग केसरिया इन द फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन। हमने आपसे पूछा कि किस फिल्म के लिए और किस गाने के लिए उनको पहली बार के नेशनल अवार्ड हासिल हुआ था। सो दैट वाज फॉर द फिल्म पद्मावत और गाना था बिनते दिंदल। बहुत सारे सही जवाब आए, लेकिन जिन्होंने हमें सबसे पहले सही जवाब दिया और जिनके नाम जाता है आज का ये इनाम, दैट इज 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाहिद हाली। ये जो लगने वाला है एट SVICC फ्रॉम 12 अप टिल 16 अगस्त 2026 और ये इनाम जाता है बड़े दिप्रेत पोर्टिस की रहने वाली वंदना भिखारी जी को। आपको बधाई। यस वंदना जी, आपको बधाई। आपको बहुत जल्द यहाँ से MBC से कोई भी फोन करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कब आकर कैसे आकर आपको अपने इनाम प्राप्त करने हैं या तो कैसे आपको हासिल होने वाले हैं ये सभी टिकट्स और ये फूड कूपन। सो बधाई, और जितने भी लोगों ने भाग लिया आप यूं ही सुनते रहिए रेडियो मस्ती। आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में कौन जाने आपकी जीत हो जाए।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। आज एवरी संडे आफ्टरनून शर्मिली जी हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम बोना गए, उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर द होल हुकुम फैमिली। साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग रोशनी जी के लिए कटरपोर से हमारा साथ निभा रही हैं और वो गाने बहुत ही पसंद कर रही हैं। थैंक यू रोशनी जी। एंड दिस वन मैसेज जो विदेश से आया है, यस फ्रॉम कनाडा, और लिखते हैं कि गाने उनको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली मैसेज है निर्माण जी की ओर से फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स। So keep on sending me your messages on 54991294. Shreshta ji ne yaad kiya from a phone to sack. Next song for Habib Dalglish. Sister Shamta Sumaru and nephew Sumaru.

0: मोहब्बत बरसी थी।
1: बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बरसात की धुन सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडियो में आपके मैसेज की वर्षा अवश्य हो रही है। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी योर लव ऑन 549-8194। श्याम देवी जैन जी हॉट कॉफी लेते हुए हमारा साथ निभा रहे हैं। थैंक यू श्याम जी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू आदर्श रविशु नीलांबर जो आज 18 साल के हो रहे हैं। बेस्ट विशेज टू हिम फ्रॉम मामा अंजू, पापा रजई, भाई आदित्य, नानी, मामू, आश, पवन, मौसी, कजिन्स एंड फ्रॉम द होल डचमैन फैमिली ऑफ बेल्वेडेयर। थैंक यू। गाना जाता है साथ ही साथ भरद्वाज जी के लिए एंड द होल विदेशी फैमिली। नेक्स्ट सॉन्ग आल्सो गोइंग फॉर नंदनी, नंदा, मीरा, कमला, भाई राजू, प्रिया, रीना, केविन एंड द होल ओबिलक फैमिली जो पाइनवुड के रहने वाले हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर नीतू जी जो पालमा रोड कटरबोन से हमारा साथ निभा रही हैं, राजीव की ओर से फ्रॉम सेंट पियर।

0: म्यूजिक चकचकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जी आपके साथ 24 घंटे 24 आवर्स अ डे 24/7। और आप भी इतना प्यार से हमारा साथ निभाते हैं, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। A big hi to all those listening out there from the whole Mahabir family of Vakwa. Devi Karani ji, Sona ji and all the kids spending some very nice time together. Aapko bahut bahut shukriya. Swinal ji, hamare saath nibha rahe hain, har har Mahadev kehti hain wo. To all the Shiv Bhaks on their way to unke kaunwar ke saath. Especially Bhai Shravan, Bhavi Kirti, Abhinav, Kian and Navya and the whole Tinak family celebrating very, very piously together in the whole mass of Shravan, of Shravan. And this message is next song going for Habibi Vishal, daughter Shia, bete Neil and Papa Satish Ramdeen. Message is Priya Padu ji ki orse from New Grove. Thank you. और ये अगला मैसेज डेडिकेटिंग नेक्स्ट सॉन्ग फॉर हबी ऋषि एंड डॉटर्स ऑफ नी एंड अदिति। मैसेज है अनुष की ओर से। सो थोड़ी देर में शाम के 6 बज जाएंगे और तब आप सुनेंगे समाचार और

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: शाम के 6 बज रहे हैं।

0: रविवार 9 अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में पानी के घटते भंडार के बीच सोमवार से ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू होंगे। पीने के पानी से गाड़ियां धोने, पौधों की सिंचाई और स्विमिंग पूल भरने पर पाबंदी रहेगी। वहीं कौवाश कारोबार को भी नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। मानव तस्करी को लेकर मॉरिशस में फिलहाल 34 पीड़ितों की देखभाल और सरकारी संगठन कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं। इनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं 21 मामलों की पुलिस जांच या कार्रवाई जारी है। दुनिया में भूख की समस्या में मामूली सुधार के बावजूद करोड़ों लोगों को आज भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। मॉरिशस में भी कई परिवार पौष्टिक भोजन जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सीरियों सुलेया ने कुपोषण से निपटने के लिए और प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बेकाबू जंगल की आग के बीच आपातकाल की घोषणा। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। आग 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। उधर स्पेन के कुछ हिस्से भी जंगल की आग से जूझ रहे हैं। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। पानी की हर बूंद अब मायने रखती है। सोमवार से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू हो रहे हैं। पीने के पानी से गाड़ियां धोने, पौधों की सिंचाई करने या स्विमिंग पूल भरने पर पाबंदी होगी। देश के जलाशय फिलहाल अपनी कुल क्षमता के करीब 61% तक भी भरे हैं, लेकिन सूखे का असर सिर्फ जलाशयों पर नहीं, भूमिगत जल और नदियों पर भी दबाव पड़ रहा है। पानी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का मार्शल प्लान भी अमल में है। इस पर हम हमारे इस बुलेटिन के दौरान एक बार फिर आएंगे। पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इसका असर आम लोगों के साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। कौवाश कारोबार को भी अब पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। ऐसे समय में जब देश में पानी के भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है, कौवाश संचालक इन पाबंदियों के लिए कितने तैयार हैं, इस पर हम एक बार फिर हमारे अन्य बुलेटिनों में आएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नशे की लत युवाओं के लिए एक बढ़ती चिंता। डॉक्टर इद्रिस गुमानी ट्रीटमेंट सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 16 से 24 साल के करीब 1,00,000 युवा रोजाना ड्रग्स का सेवन करते हैं। नशे की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में काम करने वाली इस संस्था ने आज प्लेनवेयर की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस दौरान युवाओं को नशे के नुकसान और इससे दूर रहने के बारे में जानकारियां दी गई। कुणाल गुजी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्लेनवेयर के अल अक्सा मस्जिद में 12 से 18 साल के नौजवानों के लिए ड्रग्स पर एक जागरूकता सत्र लगाया गया। डॉक्टर इद्रिस गुमानी ट्रीटमेंट सेंटर के आयोजकों के अनुसार कम उम्र से ही ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।

0: क्योंकि ड्रग्स के धीरे धीरे बढ़ रहे मस्तिष्क पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है।
1: Le fil constaté depuis ces cinq dernières années, un rajeunissement dans la consommation des drogues en général, que ce soit la cigarette, l'alcool, le cannabis, avec ben les autres produits illicites.
0: पिछले पांच सालों में ड्रग्स के आदि लोगों की आयु कम होती जा रही है। 19 साल का व्यक्ति 11-12 साल की उम्र से ही नशे का आदि होने लगता है। 20 साल पहले 26 से 29 साल के लोगों को ये समस्या होती थी, अब ये उम्र 18 से 24 साल हो गया है। इस पहल का मकसद है ड्रग्स के खतरे को कम करना, स्पष्ट और सही जानकारियां देना, दोस्तों के दबाव का सामना करने में नौजवानों को सक्षम बनाना।
2: Aujourd'hui, avec le problème de bullying dans l'école, le problème de peer pressure,
0: बुलिंग और दोस्तों का प्रभाव, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। बच्चों को जागरूक करना जरूरी है कि वे इस जाल में न पड़ें, क्योंकि इससे बच निकलना बहुत मुश्किल है। आयोजकों के अनुसार इस सत्र में शामिल कुल 26 युवाओं के ड्रग्स को लेकर विचार जमीनी हकीकत से काफी अलग हैं। औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 55,000 युवा रोजाना मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। हालांकि डॉक्टर इद्रिस गुमानी केंद्र के अनुसार वास्तविक संख्या इससे दुगनी हो सकती है।
3: मॉरिशस की सड़कों को अब गूगल मैप्स पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की टीम मॉरिशस में है और खास कैमरा से लेस 3 गाड़ियां देश भर की सड़कों की तस्वीरें खींच रही हैं। करीब 6,000 किलोमीटर सड़कों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। तस्वीरें तैयार होने के बाद इन्हें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर डाला जाएगा, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग मॉरिशस को देख सकेंगे। मॉरिशस के बाद रोड्रिग्स में भी ये काम किया जाएगा। दसापला स्वामी की रिपोर्ट पर एक बार फिर यशना मिश्रा का विवरण।
0: वे एक महीने तक देश का दौरा करके सभी सड़कों को नक्शे में उतारेंगे, साथ में पर्यटन स्थल भी, वो भी 360 डिग्रीज में। 3 गाड़ियां जिनके ऊपर कैमरे लगे हैं। वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 से फ्रेडरिको की टीम का काम है ऐसे चित्र कैमरे में उतारना। ये 8K में 360 डिग्रीज कैमरे हैं जो स्ट्रीट व्यू चित्र खींचते हैं। हम इसे साधारण गाड़ियों में डालकर इसे एप्लीकेशन के साथ जोड़ते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी सड़कें बची हैं। हम सिर्फ अच्छे मौसम में ही बाहर निकलते हैं ताकि सबसे अच्छी तस्वीरें खींच पाएं। हर रोज गाड़ियां 250 किलोमीटर पार करती हैं। इस पोर्ट में देख पाते हैं कि 20% सड़कें नक्शे में उतार दी गई हैं। इस वक्त एक चालक एक मुख्य सड़क पर है। मॉरिशस में लगभग 6,000 किलोमीटर सड़क है। चित्रों को सही रूप देकर गूगल मैप्स में डाला जाएगा। अंदाजा है कि 1.5 महीने लगेंगे चित्र खींचने में। 16 लोग इसमें जुड़े हैं 2 चरणों में। साल के अंत तक ये चित्र इंटरनेट पर आम होंगे। हिंद महासागर में मॉरिशस एकमात्र देश है जहां ये सेवा उपलब्ध है। इलाके के अन्य देशों की ओर भी हम बढ़ेंगे। 360 डिग्रीज फोटोज अब मुसाफिरों के लिए आम है। इस परियोजना से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। मॉरिशस टूरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी इस परियोजना के सही संचालन के लिए सभी मंजूरियां दे रही हैं। पर्यटकों और नागरिकों को इससे फायदा होगा। 3D और 360 में मॉरिशस को देखना, विश्व डिजिटल नक्शे में भी ये दिखेगा। मॉरिशस के बाद कैमरे रोड्रिग्स ले जाए जाएंगे।
3: आज शुक्रवार को आत्सू ने सैंक्वा इलाके में बड़ी कार्रवाई की। मेट्रो नॉर्थ डिवीजन से जुड़ी एक टीम ने एक बैग बरामद किया, जिसमें नशीले पदार्थों के साथ पैकेट मिले। बरामद नशीले पदार्थों में मुख्य रूप से हेरोइन शामिल थी। इन्हें अलग अलग तरीकों से छिपा कर रखा गया था। कुछ पदार्थ सील्ड प्लास्टिक पैकेटों में और फूड रैप में पैक थे, जबकि 175 एल्यूमिनियम फॉइल में भी नशीले पदार्थ छिपाए गए थे। इसके अलावा सिंथेटिक कैनाबिनोइड के 2 पैकेट भी बरामद किए गए। कुल

0: नगर करीब 549 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 8.4 मिलियन मोशन रुपए से अधिक बताई गई है। मामले की जांच जारी है। पुलिस अब नशीले पदार्थों के स्रोत का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। मानव तस्करी एक ऐसी समस्या है जो किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों की देखभाल एनजीओज कर रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, वहीं 21 मामलों की पुलिस जांच या कार्रवाई जारी है। देश में ऐसे मामलों की संख्या फिलहाल सीमित है, लेकिन इनसे निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से कई व्यवस्थाएं मौजूद हैं। दुनिया में भूख की समस्या में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था FAO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मॉरिशस में भी कई परिवारों के लिए भरपेट और पौष्टिक भोजन जुटाना आसान नहीं है। संस्था चिरियों सुलई के मुताबिक खासकर बच्चों को सही पोषण देने में कई परिवारों को परेशानी हो रही है। संस्था का कहना है कि कुपोषण से निपटने के लिए अभी और प्रयास की जरूरत है। भक्ति की परंपरा श्री कृष्ण भगवान के प्रति आस्था और पीढ़ियों तक आगे बढ़ता आध्यात्मिक संदेश, इसको उनके लिए ये साल 2 खास पड़ाव लेकर आया है। संस्था अपनी संस्थापना के 60 साल पूरे कर रही है। वहीं मॉरिशस में इसके संस्थापक श्रीला प्रभुपाद की ऐतिहासिक यात्रा के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। आधा शताब्दी बाद भी उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत मॉरिशस में जीवंत है। यशरा मिश्रा।
1: भगवद गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देना और कृष्ण चेतना का संदेश लोगों तक पहुंचाना, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय दार्शनिक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की। आज दुनिया भर में 800 से अधिक संस्थाएं उनके संदेश के प्रसार में योगदान दे रही हैं। आध्यात्मिक गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1975 में मॉरिशस का दौरा किया। देश की उनकी एकमात्र यात्रा ने यहाँ के सदस्यों पर गहरी छाप छोड़ी और मॉरिशस में इस आंदोलन की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णा कॉन्शियसनेस शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, प्रभु के साथ हमारा संबंध क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए। प्रभुपाद को 1975 में उस वक्त के प्रधानमंत्री सचिव सागर रामगुलाम ने आमंत्रित किया था। मॉरिशस में इस्कॉन की स्थापना को 60 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रभुपाद द्वारा दी गई शिक्षाएं और मूल्य आज भी इस विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम कृष्ण भक्त हैं और हमें सभी जीव प्रिय हैं। हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मॉरिशस पोस्ट के सहयोग से एक स्पेशल डे कवर तैयार किया गया। इसका अनावरण गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने किया।
0: जिसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इसका असर आम लोगों के साथ साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। कौवाश कारोबार को भी अब पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। ऐसे समय में जब देश में पानी के भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है, कौवाश संचालक इन पाबंदियों के लिए कितने तैयार हैं, सुनते हैं इस रिपोर्ट में संतना पोसेनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नए नियम लागू होने से पहले इस रविवार कई लोगों ने अपनी गाड़ियों की सफाई करवाई। कौवाश स्टेशनों पर कामकाज सामान्य रूप से चला, हालांकि इस सोमवार से गाड़ी धोने की आदतें बदलनी होंगी। इस स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने तैयारी के लिए कदम भी उठा लिए हैं। खासतौर पर वाटर सप्लाई नेटवर्क पर दबाव कम करते हुए कामकाज जारी रखने के लिए रेन वाटर

0: अवेस्टिंग एक पसंदीदा समाधान है।
1: फिर
0: इस सिस्टम से काम चलता रहता है बशर्ते पानी का काफी भंडार मौजूद हो। हालांकि कई हफ्तों से बारिश कम पड़ी है और कुछ कारोबार मालिकों के लिए अनिश्चितता का माहौल पहले से ही काफी गंभीर हो गया है।
2: Quand la pipe est tombée, mon car met mon tank, on dirait un seul tank, mon grandi, mon met deuxième tank. Mais plus ou moins, nous ne connaissons comment ça peut être. Nous essayons, nous attendons, comme on nous dit, nous attendons cyclone là, venez nous guetter. On a un petit bon poids lourd, camion, bus, même 10 bits, là, mais là, un gros transport là, on va pouvoir prendre.
0: कुछ लोगों ने पाबंदियां लागू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। नए नियम लागू होने से पहले रविवार को टूरिज्म अथॉरिटी की टीमें जरूरी सफाई के कामों में जुटी रही।
3: Le problème de l'eau, à cause ça nous va faire moins possible, nous va faire servir trop beaucoup de l'eau. Nous pouvons faciliter les choses pour pas aucun problème pas dérouler.
0: Yad rahe ki CW ki pabandiyon mein gaadiyan dhone, ghar aangan ki safai, bagichon mein sinchai aur swimming pool bharne jaisi gatividhiyan shamil hain. Ye pabandiyan is somvar 10 agast se lagu hongi aur agle 30 november tak jari rahengi.
4: मानव तस्करी एक ऐसी समस्या है जो किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों की देखभाल एनजीओज कर रही हैं। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से कई व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर, अदिति अवतार का विवरण।
0: मानव तस्करी में लोगों का शोषण होता है, चाहे वे विदेशी नागरिक हों या स्थानीय लोग। इसके सबसे आम रूप हैं जबरन मजदूरी, यौन शोषण और जबरदस्ती भीख मंगवाना। मॉरिशस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक व्यवस्थित तरीका अपनाकर इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। IOM की चीफ ऑफ मिशन आलिया हिरजी कहती है, हम साझेदारी, पीड़ितों की सुरक्षा, न्यायिक प्रोसिक्यूशन और रोकथाम पर बल देते हैं। मैं मॉरिशस सरकार की प्रशंसा करती हूं, जो इस सिलसिले में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए हमारी संस्था से समर्थन की मांग की गई है। हम देखेंगे कि किस तरह हम आपसी सहयोग बढ़ा सकें, जिससे मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष तेज की जा सके। मॉरिशस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या गंभीर नहीं है, लेकिन इस तरह का एक भी पीड़ित होना बड़ी बात मानी जाती है।
5: It's really not that big, but still one victim is too many.
0: मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष व्यवस्थित और मजबूत करने की दिशा में IOM ने पिछले दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री दफ्तर के समक्ष एक महत्वाकांक्षी कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया। IOM की प्रोग्राम एसोसिएट जानवी गुरा कहती हैं, जरूरी है कि जागरूकता और तेज की जाए। विभिन्न साझेदारों की तरफ से अलग अलग पहलुओं के प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही कार्य योजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि पुरुषों के पीड़ित होने के पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पास्कल जैसे गैर सरकारी संगठन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीड़ितों की मदद के वास्ते अथक प्रयास करते हैं। अभी ऐसे 34 लोगों की देखभाल की जा रही है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल है। पास्कल की निदेशिका मिलानी वालिया कहती है, जैसे ही पीड़ित शेल्टर में आते हैं तो हम उनकी समस्याओं का जायजा लेते हैं। कई लोग ट्रोमा से गुजरते हैं, दुर्भाग्यवश इसके लिए काफी समय लग जाता है, कुछ मामलों में 3 साल तक लग रहे हैं। हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और आत्मनिर्भरता के प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉरिशस में गवाही के लिए रहना पड़ता है। इस संघर्ष में विभिन्न टापुओं के बीच सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए गैर सरकारी संगठन जीमुआ अहम भूमिका निभा रहा है। हिंद महासागर के लिए संगठन के निदेशक यूलान ओडोल कहते हैं, मानव तस्करी जैसे अपराध के ज्यादातर पीड़ित मारागास्कर से होते हैं। जीमुआ की वहाँ भी एक शाखा है। हम विशेष रूप से जागरूकता पर बल देते हैं। जानकारियों की कमी से आसानी से ये अपराध किए जा सकते हैं। लाइन बैरक्स स्थित पुलिस की कम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट लगभग 3 सालों से कार्यरत है। इसके अंतर्गत अभी इस तरह के 21 मामलों की जांच चल रही है। चीफ इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद नाजिर अली कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मानव तस्करी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यदि परिस्थितियां गंभीर हो, जैसे यदि पीड़ित कोई बच्चा हो, कोई पत्नी हो, या यदि पीड़ित को ड्रग्स या और कोई नशा दिया गया हो जिससे उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस की कम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट ने 148 की एक हॉटलाइन, एक व्हाट्सएप नंबर

0: नंबर और एक खास ईमेल जारी किया है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी गुमनाम तरीके से दे सकता है।
1: कई साल की देरी के बाद पेनमानियों में डीबीएम के एसएमई पार्क का काम जल्द फिर शुरू होने की उम्मीद है। बाढ़ और सुरक्षा से जुड़े खतरों के कारण इस परियोजना का काम रोक दिया गया था। छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए बनाए जा रहे इस एसएमई पार्क पर अब तक करीब 200 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दैविक राजकुमार, याचना मिश्रा।
2: 2020 में प्लेनमायों में छोटे और मध्यम उद्योगों के इंडस्ट्रियल पार्क के कार्य रोक दिए गए, कारण 2022 में उत्पन्न बाढ़। तब से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए अब एक रिटेंशन बेसिन का निर्माण किया जाएगा। कार्य रोके गए क्योंकि जब जगह चुनी गई तो कोई अध्ययन नहीं किया गया और बाढ़ के कारण यहां पानी जमा हुआ। एलडीए जिला परिषद ने अनुमति नहीं दी। सभी अध्ययनों के बाद अब एक रिटेंशन बेसिन बनाया जाएगा, बाढ़ का पानी वहां जमा होगा। कार्य 70% पूरे हो गए हैं। बनने के बाद डीबीएम के इस पार्क में ठेकेदारों के लिए 40 जगह उपलब्ध होंगी।
3: Une demande accrue pour ça une demande de remplacement pour une PME.
2: कई मांगे मिली हैं। 40 स्टॉल्स होंगे। यदि हर एक एसएमई के लिए 10 लोग होंगे तो लगभग 400 नौकरियां पैदा होंगी, उत्पादकता बढ़ेगी। चुनाव क्षेत्र के सांसदों के अनुसार लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार हो रहा है। आज बैठक लगी देखने के लिए कि इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि यहां के निवासी भी एक उद्योग शुरू कर
3: पाए।
2: कई मांगे मिली जहां लोग इलाके में ही स्थान ढूंढ रहे हैं। ये एक सुनहरा मौका है उनके लिए। बाढ़ से बचाव के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी भी कार्य चला रहा है। रिटेंशन बेसिन और पार्क के निर्माण कार्य एक साथ चलाए जाएंगे।
1: टेक्निक, रफ्तार और नई सोच के साथ अब लक्ष्य विश्व मंच का है। स्टेम रेसिंग मॉरिशस से जीतने के बाद 37वीं कॉलेज के ग्रेड 12 के छात्र वर्ल्ड फाइनल की तैयारी में जुटे हैं। टीम सीएसई वेलोसिटी अक्टूबर में सिंगापुर में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेगी। फिलहाल टीम अपनी नई रेसिंग कार की रफ्तार और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। 3 दशकों के सफर के बाद पिल्स अब एक नए रूप में आगे बढ़ रही है। एचआईवी को लेकर जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए काम और मजबूत करने के लिए संस्था ने नई पहचान पेश की है। इसमें नया लोगो, नई जागरूकता मुहिम और आने वाले समय में नई डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं। पोर्ट लुइस के नूविला कम्युनिटी सेंटर में आयोजित एक समारोह में नए लोगो की लॉन्चिंग की गई।
4: संगठन के 30 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया है। एनजीओ के संस्थापक निकोला रिटर कहते हैं, 30 साल से पिल्स को प्रणाली के अनुसार काम करना पड़ा। हमने प्रस्ताव रखा, नयापन लाया गया और ये दिखाया कि लोगों को इलाज प्रदान किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पतालों के बाहर। इस नई पहचान का अनावरण एनजीओ के नूविला सामुदायिक केंद्र में किया गया, जिसमें संगठन के सहयोगी और साझेदार भी मौजूद थे। इसके तहत रोकथाम और जागरूकता के लिए एक नया अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके कार्यकारी निदेशक जोएल सामने कहते हैं, यौन संबंधी स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है क्योंकि नौजवान लोग नाजुक वर्ग के हैं, कम उम्र से ही उनके बीच जागरूकता फैला रहे हैं। लोगों के लिए जानकारी और सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से एक नई वेबसाइट भी।

0: visant à améliorer l'accessibilité qui serait accompagnée d'une application mobile sera aussi lancée d'ici novembre de cette année.
1: और विदेश में जो खबरें हैं सुर्खियों में, एक बम, कुछ ही पल और एक शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम ने हजारों जिंदगियां छीन ली और दुनिया को परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत दिखाई। आज उस घटना के 81 साल पूरे हो गए हैं। क्या हुआ था उस दिन और इतिहास में क्यों हमेशा के लिए दर्ज हो गया नागासाकी, सुनते हैं।
2: 9 अगस्त 1945 दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। आज इस हमले के 81 साल पूरे हो गए हैं। नागासाकी पर गिराए गए प्लूटोनियम बम का नाम फैटमैन था। इसे अमेरिकी B-29 विमान से सुबह 11:02 पर गिराया गया था। इस हमले में 1945 के अंत तक करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। इससे सिर्फ 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें उसी साल के अंत तक करीब 1,40,000 लोगों की जान गई थी। इन दोनों हमलों के कुछ दिनों बाद 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आज नागासाकी और हिरोशिमा के परमाणु हमलों में जीवित बचे लोगों की संख्या घटकर 91,105 रह गई है। जापान में इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। उनकी औसत उम्र अब 86 वर्ष से अधिक है। समय बीतने के साथ इन घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाहों की संख्या लगातार कम हो रही है।
1: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। तेजी से फैलती आग के कारण प्रांत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। आग रातों रात लगभग दुगनी होकर 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई। कई मकान और संपत्तियां भी इसकी चपेट में आई हैं। उधर स्पेन के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी के बीच जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करें कुछ अलग। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से लेकर मणिपुर की रंग बिरंगी संस्कृति तक भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति, खेती और परंपराओं का अपना एक खास रंग है। कश्मीर में सेब की सदियों पुरानी पहचान अब हाई डेंसिटी खेती जैसी आधुनिक टेक्निक के साथ नया रूप ले रही है। तो मणिपुर में नवा तंगमय उत्सव यानी खीरा उत्सव स्थानीय उपज के साथ पारंपरिक गीत संगीत नृत्य और संस्कृति की खूबसूरती को सामने ला रही है।
2: खूबसूरत वादियां, दूर तक फैले पहाड़, ठंडी हवाएं और इनके बीच सेब से लदे बाग, कश्मीर की तस्वीर से सेब को अलग करना शायद मुश्किल है। यहां सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही खेती की परंपरा और हजारों परिवारों की रोजी रोटी का अहम हिस्सा है। अब बदलते समय के साथ इन बागों में नई टेक्निक भी अपनी जगह बना रही है। हाई डेंसिटी खेती के तहत कम दूरी पर ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। पारंपरिक बागों के मुकाबले ये पेड़ जल्दी फल देना शुरू करते हैं और किसानों को बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद करते हैं। कतारों में सजे छोटे छोटे पेड़ और उनकी शाखाओं पर लगे चमकते लाल सेब इन बागों को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, लोक संगीत की धुन और मणिपुर की संस्कृति की खूबसूरत झलक। मौका था नवे टैंगमय उत्सव यानी खीरा उत्सव का, जहां एक साधारण सी फसल के बहाने स्थानीय संस्कृति के कई रंग एक साथ देखने को मिले। उत्सव में स्थानीय किसानों की उपज और अलग अलग किस्मों के खीरे प्रदर्शित किए गए, लेकिन समारोह की रौनक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पारंपरिक गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मणिपुर की समृद्ध विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। ये उत्सव स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ अपनी परंपराओं और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक खूबसूरत जरिया है।
1: बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारी की ओर, यात्रा मिश्रा के साथ।
3: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद भी मौसम बरसाती रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं

वहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवालेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:35 पर, शाम को सूर्यास्त 5:55 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारी सहयोगी शिव है, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: शुक समाचार सुनिए। लतापी रोड बोन अकोय में, लतापी रोड बोन अकोय में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री राम स्वरूप निरंजन, श्री राम स्वरूप निरंजन जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:45 पर उनके बहनोई देवेंद्र राव के घर बोनाकोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 2:45 PM। आलिता मारे बॉम्बू में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्योति नापुल पैदाशनाम ननकू और जिनची मादाम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:15 पर उनकी बेटी उषा देवी नापुल बिजलोल के घर आलिता मारे बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:15 PM। कनालेन पालमा काठबोन में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री हीरालाल रामबन जैन जीवन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामबन के घर पालमा काठबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। मिशन टुमारो एट 1 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुनीलाल रूपना जिन्हें सुनील के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 उनकी पत्नी बबीता रूपना के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। गृधारी रोड कैथोसियो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री महेंद्र गृधारी जिन्हें सीता के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 उनके बेटे कुसी वर्मा गृधारी के घर कैथोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। रुद्बासें कैट्रोबोन में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड के श्री अंबीराव जयवंत सोनू जिन्हें अंबीराव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले मेजिन शुगर स्टेट में काम करते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। रुद्रपांचू स्टैनली रोजिल में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्री भवानी दीन तिलोती पैदाशी नाम सांसनरुआ और जिन्हें शर्मा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 उनके घर स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगर्द कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कांडालेन रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिनियामा इरापा पैदाशाम कॉपेन और जिन्हें आती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर ट्रेफल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदिगौत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30। स्कूल लेन कुतेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मानती बिकन पैदाशाम रामनारायण और जिन्हें मानती के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 उनके पति देवानंद बिकन

0: उनके घर को तेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM L'Espérance Trébuchet आनंद रोड L'Espérance Trébuchet में 57 साल की 57 years old की श्रीमती महालक्ष्मी पुनित पैदाशी नाम सालांदी और जिन्हें रेखा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके घर L'Espérance Trébuchet से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Music, Dr. Gutter.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 6:30 सबको संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाता।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: सुफियाना इश्क और मधुर आवाजें ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो मस्ती। रात के 7 बजने में कुछ ही मीटर बाकी हैं। चलें ये गाना

हो जाए भाभी अंजू के लिए और भाई संजय के लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, शुमे गई जा रहे हैं रिसेप्शन की ओर. विशिंग यू ऑल अ वेरी नाइस सूदिंग जर्नी और बहुत ही खूबसूरत इवनिंग दोनों साथ में. नेक्स्ट ऑन गोइंग फॉर राधा जी जो कनाडा से हमारा साथ निभा रही हैं. लवली शो एज यूजुअल, वो लिखते हैं प्लीज डेडिकेट अ ब्यूटीफुल वन फॉर माय फैमिली इन कनाडा फॉर योरसेल्फ एंड ऑल आवर एमटू लिसनर्स. लिखते हैं अ पायस श्रवण मास एंड हर हर महादेव टू ऑल लिसनर्स. शुक्रिया राधा जी. और माला जी अपनी ओर से लिखती हैं कि क्या लिखती हैं, मुलाकातें तो हर रोज हजारों लोगों से होती हैं कि मुलाकातें तो हर रोज हजारों लोगों से होती हैं लेकिन सच्ची दोस्ती तो सिर्फ उनसे होती हैं जिन्हें किस्मत दिल से मिलती हैं, जिन्हें किस्मत दिल से मिलती हैं. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय फैमिली एंड फॉर यू. थैंक यू माला जी, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव. सो थोड़ी देर में शाम के 7 बजाएंगे और फिर आपकी मुलाकात होगी आज पूनम के साथ. यस, पूनम के साथ. Take good care of yourselves and have a great week ahead. Nashrin ji ka message abhi abhi gir raha hai. So Nashrin ji, aap jo poetry se hamara saath nibha rahi hain, for you and for all your good friends, agla gana jata hai. Aur chalte chalte ye do aakhri messages hum le lete hain. Next one going for Dharan Shweta Ravi Prishan Lavesha jo ghoshton se hamara saath nibha rahe hain. And for Habib Vishal, daughter Shriya, Neil and Baba Satish Ramdin from Priya Padu of New Grove.

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: 7:07 हो चुके हैं. संडे का प्यारा सा दिन, 9 अगस्त. क्या बात है आज का मौसम, क्या कहने. सुहाना मौसम, ठंडी हवा और दिल से कुछ कहने की बेचैनी. पूरा हफ्ता भागदौड़ की है ना, काम की है, पार्टी की है, घर सब कुछ देखा होगा. पर आज आज है संडे वीक का एंड और ये रात सिर्फ आपके लिए. बस थोड़ा सा वक्त अपने लिए, खुद को रिवाइव करने के लिए. तो चलो आज रात प्यार में बहते हैं, साथ रहते हैं और मस्ती करते हैं, क्योंकि आरएम2 रेडियो ये गाने मैं आपके साथ पूनम हूँ और सब कुछ लेकर आए हैं एक साथ एक पैकेज में. तो चलो जी लेते हैं इस रात को मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ. ये है बॉलीवुड सिज़लर, मैं हूँ आपके साथ पूनम. इंजॉय कीजिए गाने और अपने मैसेज भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा 5499124 पर. इंजॉय कीजिए ये वाला गाना, आप सबका फेवरेट होगा.
0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: 7:17 हो चुके हैं और मैं हूँ इस समय आपके साथ पूनम RM2 रेडियो मस्ती लेकर आता है आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से गाने और स्पेशली संडे को तो जो मूड होता है ना सभी का बस काम कर करके पूरे दिन की थकान और इस समय चाहते हैं थोड़ा सा बस खाना मिल जाए थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। हर किसी को हर कोई बोल रहा होता है बस 2 मिनट दे दो 5 मिनट दे दो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें उसके बाद फिर से कल बहुत सारे काम करने होंगे। आज मैं सोच रही हूँ ये 2 घंटे हम याद ही ना करें कि हमने करना क्या है क्योंकि कल तो फिर वही रेगुलर वही सारा टाइम वही हो जाएगा पूरा वीक क्या करना है। पर अभी ये 2 घंटे हैं जहां से हम अपना ब्रेन को सेट करेंगे और आपको पुराने गानों के साथ में तो जो मिक्स खिचड़ी वाली होती है ना उसका फील देंगे। और अगर इस समय जो हमारे को इस समय सुन रहे हैं आपको मैसेज करना है 5499 1294 पर और बताना है कि भाई आपको कौन सा गाना सुनना है। और जो इस टाइम हमारे साथ ऐसे लिसनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं जो गाड़ी में जा रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं उनको हम बस इतना कहेंगे खूबसूरत मौसम है इंजॉय कीजिए और ये गानों की जो गर्माहट है ना सिजलर क्योंकि तभी तो सिजलर्स होता है ना गर्मा गर्म गाने आते हैं और या गर्मा गर्म खाना आता है तो इस समय अगर आपको खाना मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो बस किचन में जाओ वहाँ पर जरा थोड़ा सा देख कर आओ कि क्या बना है। घर पर फैमिली मेम्बर्स भी कई बार बनाते हैं और आजकल तो लड़के इतने अच्छे शेफ्स हैं कि उन्होंने तो मतलब एक मूड ही चेंज कर देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा खाना होना चाहिए थोड़ा सा ईजी होना चाहिए रात को और थोड़ा सा मस्ती वाला खाना होना चाहिए। तो रेडियो मस्ती आपके लिए लेकर आया है सिजलर्स वाले गाने इंजॉय करते हैं और साथ में थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं चारों तरफ देखिए कि कहीं कोई मतलब धुन में आराम से आप ड्राइव कर सकें इजीली ड्राइव कर सकें मज़ा लीजिए गानों का। ये है आपका बॉलीवुड सिजलर इंजॉय में एक स्पेशल थोड़ा सा देते हैं फ्लेवर बहुत ही प्यारा सा गाना है सोनू निगम की आवाज़ में इंजॉय कीजिए क्योंकि अभी आप सुन रहे थे नूरा ज्योति नूरा की आवाज़ में और अब है सोनू निगम
0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: 7:29 हो चुके हैं और मुझे पता है कि आज रात आप किसी को याद कर रहे हैं ना. यस, बिल्कुल कर रहे हैं. वो जो दूर है या वो जो पास है, पर नज़र नहीं आता या नहीं आती. गाने हैं ना, गानों में वो बात होती है जो दिल की बात कह दे. तो आज रात बस ख्वाबों में जियो, क्योंकि ये रात सपनों की है. जब सपने प्यारे प्यारे आते हैं तो सुबह बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस रहती है चेहरे पर. एहसास होता है जिससे बात करनी थी, जो बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी या बात होगी, या बहुत टाइम से उसको देखा ही नहीं, अगर वो सपने में आ जाए तो बस वो बहुत फीलिंग बहुत अच्छी होती है. और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बस अच्छी बात है, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठेंगे उसकी याद आएगी. उसको मैसेज करिएगा

0: या कॉल कीजिएगा, बस उनको पूछिएगा कहाँ पर थे इतने दिन। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस की बहुत सारी बौछार हो रही है, वैसे ही बाहर बारिश हो रही है, तो साथ जुड़े रहिए। आरएम टू रेडियो मस्ती लेकर आया आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। हम थोड़ी देर के बाद आपके सबके मैसेजेस पढ़ेंगे, पर आपको इतना ही सिर्फ कहेंगे कि अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो अभी भी टाइम है, आप भेज सकते हैं 5499124 पर। इन्जॉय कीजिए अपने गाने शिल्पा राव की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सैयारा मूवी से गाना लिया हुआ, इन्जॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा 5499124 पर कैसा लगा। और अगर आपका भी कोई फेवरेट सॉन्ग है और आप बताना चाहते हैं तो हम हैं आपके साथ, इन्जॉय कीजिए ये सॉन्ग।
1: बॉलीवुड सीज़लर
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: ललित जी, आपकी वाइफ की तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग आप स्पेशली आपके लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: 7:42 हो चुके हैं और कुछ लोग रात में आज अकेले ड्राइव कर रहे होंगे या कई लोग घर पर होंगे, घर में सन्नाटा होगा, बस गानों की आवाज़ पर जानते हो क्या होता है, अकेले में एक खूबसूरत एहसास जागता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से मिलते हैं, तो उस अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और हमारे बहुत सारे दोस्त जिस समय बैठे हैं कहीं पर और कह रहे हैं कि क्यों ना हम भी अपने गाने बोलें कि भाई प्लीज़ हमारे भी गाने चला दीजिए। और ऐसे में ही बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षित, संजय, निष्का, गीतिका जो कि ऑस्ट्रेलिया से साथ दे रहे हैं, उसके साथ में ललित जी यूएसए से साथ दे रहे हैं, और हमारी स्वेनल बहुत ही प्यारी सी एक लिसनर है और जो कि इस समय हमारे साथ दे रही हैं, और एक अपने ब्रदर श्रवण भाया भी कीर्ति अभिनव कियान नवयान तुकलक फैमिली को विश कर रही हैं और कह रही हैं आप लोग साथ हैं तो मुझे ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती है। साथ में अंतिश रामसरन जी भी जुड़े हुए हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं और इस समय हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में हमारी ब्यूटीफुल एक मालनी जी हैं जो कि डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा एंड अबादू फैमिली रोशनवा से साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज, भाई ऐसे होता है ना कि जब मैसेजेस आते हैं और उसकी बौछार होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज है आदर्श रविशु नीलांबर जो कि आज 18 साल के हो गए, आज उनका बर्थडे है। मामू अंजू, पापा राजय, ब्रदर आदित्य, नानी, मामू आश, पवन, मौसी, कजन्स एंड ऑल लक्ष्मण फैमिली उनको विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। तुम बहुत ही प्यारे हो, क्यूट से हो, बट हम तो यही कहेंगे कि अगर आपका बर्थडे है, और हम ऐसा हो नहीं सकता कि खाली खाली फीका फीका आपका बर्थडे बनाए, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आपने अपना बर्थडे केक काटा होगा। और आज 18वां जन्मदिन है, तो क्यों ना हमारी पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉलीवुड सीज़ला
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आज रात कितना सुंदर बाहर चांद लग रहा होगा. मैं तो स्टूडियो के अंदर हूँ पर आप बाहर देख सकते हैं. मुझे भी बताएं कि आज चांद कैसा है. बट कहीं ना कहीं चांद और जब सितारे बात साथ मिलते हैं बहुत सारी बातें करते हैं. वैसे ही हम भी दोस्त होते हैं ना, आपस में सारे बातें करते हैं और बहुत सारी प्लानिंग करते हैं. ऐसे ही आपने भी ये फ्राइडे प्लान किया होगा, सैटरडे प्लान किया होगा, संडे प्लान किया होगा और अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम आपने बोला होगा भाई कुछ नहीं करना है, अब रेस्ट करना है. और अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, गानों के साथ जुड़े हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए. RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ लेकर आया है बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने. अगर आपको भी कोई मैसेज करना है, हम थोड़ी देर में मैसेजेस का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे किसने किसके लिए क्या क्या कहा. 5499-1294 आपका ही नंबर है, बस इस पे भेज दीजिए अपने दिल की बात और बताइए कि किसने क्या कहना है. देखिए कई बार होता है ना, जो रंगरेज होता है ना, किसे कहते हैं रंगरेज, रंगरेज

0: उसे कहते हैं जो रंगों को रंगता है, और जब रंगता है तो सिर्फ उसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं, चाहे नीले में सफ़ेद मिला दो, सिर्फ सफ़ेद में काला मिला दो, और रंगरेज में यही होता है कि रंग मिलाते मिलाते बहुत सारे रंग बन जाते हैं, और ऐसे ही गाने भी बहुत सारे होते हैं। आपके मूड के हिसाब से गाने बन रहे हैं, इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही प्यारा सा गाना है।
1: बॉलीवुड सीज़ला
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: 8:16 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉलीवुड सिज़लर के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। आपको पता है ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? वो पल जब आप बस होते हैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी जल्दबाजी के, बस एक गहरी सांस लेते हैं और आज रात वही पल है। तो चलो इस पल को जीते हैं क्योंकि ये पल फिर कभी नहीं आएंगे। और या तो कहते हैं ना कि ये जब कल नहीं आता तो फिर पल भी नहीं आता। तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ में अपने मैसेजेस को। चलिए वही शुरू करते हैं मैसेजेस का सिलसिला, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो प्यार से भरे डूबे हुए होते हैं तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वीटी जी, जो कि डबलिन से मॉरिशस हॉलीडेज पे आई हैं। मम गीता पापा बलम जुमन फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और स्पेशली हबी सुजॉय को, बेबी सिया, हेमा, केविन, एंजल, सरन्या, यश और गामा के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और बिल्कुल हम चलाएंगे आपकी पसंद का नेक्स्ट सॉन्ग होगा दीक्षा खुलर रोशनवा से और अपने हस्बैंड कमल के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और बस इतना कहना चाहती हैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या बात है भाई, प्यार वाला प्रोग्राम है और प्यार में कोई डूब के मैसेज करे तो बात ही बढ़िया है। खुलर जी अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। और साथ में नेक्स्ट सॉन्ग चलेगा संगीता जी के लिए और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए श्रेया, आर्यन, नील और कियान के लिए। चलिए टू प्रिंसेस रिवांश एंड रियांश, वाइफ वैष्णी एंड मॉम वेदा, जो कि उनको विजय जी बोल रहे हैं कि मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। साथ में गुलशन जी भी साथ जुड़ चुके हैं और साथ में एक प्यार से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। उनके फ्रेंड्स जो कि कलीग्स हैं सूरज, और जो कि इस समय गंगा तालाब से वापस आ रहे हैं कांवड़ लेके और कह रहे हैं सबको हर हर महादेव। प्यारा सा गाना ज़रूर चलाएगा हमारी आर जे हंसनी के लिए और सिस्टर दीक्षिता के लिए और एंजल आयशा के लिए और पूरी भोला फैमिली के लिए बिल्कुल चलाने वाले हैं। साथ में एक और आगे है रोमांटिक सॉन्ग लव जानू, हिज नेम इज मोनू, जो अभी कहाँ है अभी, ये बड़ा सा प्यारा सा लग रहा है। नमस्कार, आई एम जान फ्रॉम कैरोलिना, इंडिकेट द रोमांटिक सॉन्ग टू माय लव जानू, हिज नेम इज मोनू टू, जो अभी वैन ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, एक प्लीज़ इनके लिए गाना चलाइएगा। अरे हम एक नहीं 10 चलाएंगे, बस आप बताइए तो सही आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। बस आपको मैसेज करना है 5499 पे और जहां पर आपको बताना है कि आपका गाना कौन सा है और किसके लिए सुनाना है, हम यहीं पर हैं, आपका मैसेज पहुँचा देंगे। इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही सुंदर मैसेज के साथ में। गानों की बौछार हो रही है, बाहर बारिश है, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: बॉलीवुड सीज़लर
1: RM2, your number one Bollywood radio station।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: अब रात कहरा रही है, 8:30 बजने वाले हैं, कल सुबह नया दिन आएगा, नई उम्मीदें, नए सपने, पर उससे पहले आज रात बस सुकून लो, गानों को अपना होने दो, ख्वाबों को अपना होने दो, क्योंकि सुबह की ताजगी इस रात की ही सुंदरता में है। बाहर चांद सितारे मुझे नहीं पता कि दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, पर आप एक बार जाकर राउंड लो, एक थोड़ी सी बाहें फैला दो, देखो कितना सुंदर लगेगा, आपको भी एहसास होगा जो ये

0: ब्रीद है ना, जो ठंडक है जब अपने अंदर जाती है, एहसास होता है कि जो प्रकृति है कितना प्यार करती है। और इस समय बहुत सारे लोग जो गंगा तालाब की तरफ जा रहे हैं या टेम्पल्स जा रहे हैं या कोई अपना थोड़ा सा ऐसा मूड बनाना चाहते हैं कि बस थोड़ा टाइम सिर्फ अपना हो, उनका अपना हो और कोई बीच में ना हो, कोई भी नहीं, तो वो जो टाइम है ना वो सिर्फ आपको एक ऐसी ऑक्सीजन देगा कि आपके सिर्फ नेक्स्ट वीक ही नहीं पूरे मंथ्स और ईयर्स रिलैक्स हो जाएंगे। बट आपको सिर्फ दो मिनट इस यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, अपने साथ जुड़ना है और इन्जॉय करना है गानों को और साथ में अपने प्यार भरे वो मैसेजेस को जो कि हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि किसने किसको क्या कहा। आकाश अपनी वाइफ कीर्ति से सिर्फ इतना कीर्ति आकाश जी को बस इतना कहना चाहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ हमेशा रहना। ज़िंदगी में सबसे प्यारी जो मेरे साथ अच्छी चीज़ हुई है वो यही है कि मैंने तुमसे शादी की या मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं जो आगे ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ बस यही मेरी प्यारी मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना जाएगा मोनू जी के लिए जो कि उनकी जान कैरोलिन ने भेजा है और बस इतना क्या है कहा है कि तुम ड्राइव करते रहो पर आओगे तो तुम सिर्फ मेरे पास। क्या बात है, सो नाइस। साथ में इस समय हमारे साथ श्वेता जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि अपने परिवार को हबी दुदू रोशन और बूबू रानी वॉन्ट्स टू टेल हिम ओनली कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ कि ज़िंदगी में मैं और कुछ नहीं देखना चाहती। क्या बात है भाई, सबको ऐसे ही बस अगर प्यार आता रहे, प्यार मिलता रहे एक दूसरे से और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। साथ में एक प्यारा सा मैसेज है ज्योति जी का जो कि विष्णु जी के लिए है और बस उन्हें ये कह रही है कि ये जो तुम्हारे साथ जो मेरी ज़िंदगी की लड़ी जुड़ चुकी है ये कभी ना टूटे, मैं तुम्हारे तुमसे बस प्यार करती हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी साथ रहे हैं। बस ऐसे ही प्यार देते रहो, प्यार बांटते रहो, एंजॉय करो इस गाने को।
1: बॉलीवुड सीज़ला RM2 your number one Bollywood radio station।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: तब रात होती है शुरू, संडे भी, वीक भी, और ये दो घंटे भी होते हैं ख़त्म, पर जो एहसास है वो रहेगा हमेशा, चाहे घर पर हो, चाहे ड्राइव कर रहे हो, चाहे बस सुन रहे हो। आप सब खास हो मेरे लिए, मैं थी आपके साथ पूनम, आपके साथ हमेशा रहूँगी हर गानों के साथ, पर अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मुस्कुराना बिल्कुल भूलिएगा मत। शुक्रिया आप सभी का, आप सबके मैसेजेस का, आपके कॉल्स का, और इतना सारा प्यार और विश्वास देने के लिए। RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है, और मेरी बात जाने के बाद आपको साथ मिलने वाला है गिनीश अगा, शी इज टू फैबुलस। इंजॉय कीजिएगा उनके साथ, हमेशा प्यार बांटते रहिएगा। तो मेरी तरफ से होगी बाय बाय, और गिनीशा की तरफ से होगी हाय, चलो गुड नाइट, टेक केयर। ये गाना बहुत ही प्यारा सा है श्रिया घोषाल की आवाज़ में। मुझे तो लगता है लोरी वाला गाना जब चलता है ना तो थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगती है, पर जो अभी ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल सोने का नहीं। इंजॉय कीजिए गानों को, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय।
0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: टाइम चेक रात के 9 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
3: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.
0: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। और वैसे आज रात अगर आप किसी की यादों में खोए हुए हैं तो ये सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। जी हाँ, हर गाना एक एहसास होता है दोस्तों, और हर सुर एक कहानी सुनाती है। बस दिल खोल कर आप बस हमारा साथ दे दीजिए और हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए। लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस फॉर यू इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात जितनी खामोश होती है दिल की बातें उतनी ही गहरी हो जाती हैं। आज की रात बॉलीवुड के रोमांटिक मेलोडीज के नाम, जी हाँ, जो बात लफ्जों में ना हो पाए शायद एक गाना कह दे आपके दिल की बात। वैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बालकनी में चाय के साथ बैठे हुए हैं या बस अपनी दुनिया में खोए हुए हो तो रेडियो मस्ती आपका परफेक्ट कंपेनियन है। तो चलिए प्यार के रंगों में रंग जाते हैं। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: Well guys, I really hope कि हर एक गाना आपको दिल से अच्छा लग रहा है और बस आप भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या होता है, तो शायद उसके बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे आपके लिए, लेकिन प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता है।

इस बात को याद रखना कभी इंतजार का कभी दुआओं का और कभी सिर्फ एक मुस्कान का नाम भी होता है प्यार आज के रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके दिल को जरूर छू जाएंगे बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे रेडियो मस्ती फैमिली अगर आप किसी को मिस कर रहे हो आप किसी की यादों में खोए हुए हो कहना मुश्किल लग रहा है तो आज का गाना उसकी जगह बोल देगा दिल से सुनिए क्योंकि म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलते

रात का ये सुकून और बॉलीवुड के एवरग्रीन रोमांटिक गाने, जी हाँ, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त गिनिशा, जो आपका साथ निभा रही हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन। और अगला गाना शायद आपके दिल की धड़कन बन जाए, किसको पता। हर लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान, लेकिन हर लव स्टोरी स्पेशल जरूर होती है। आज उन्ही इमोशंस को सेलिब्रेट करते हुए, हाँ जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके प्यार।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North,
3: South,
1: 103.5,
2: East,
3: West,
1: 96.4,
3: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
4: Late night grooves में फिर से एक बार आप सभी लोगों का music lovers का स्वागत है. जी हाँ दोस्तों, once again a very good evening to all of you. नमस्कार, जर्गनीशा का प्रणाम. So अगर आप किसी को secretly पसंद करते हैं तो हो सकता है आज का गाना आपकी तरफ से एक silent message बन जाए. किसको पता? तो चलिए जी, बस आराम से आप बैठ जाइए और अपनी यादों में खो जाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए. और मैं हूँगी निशा, जो बड़े प्यार से आपका साथ दे रही हूँ.

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: रात की हवा चांद की रोशनी और बॉलीवुड के अनमोल रोमांटिक गाने बस इतना ही तो चाहिए एक परफेक्ट नाइट के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार्ट ऑफ योर नाइट। लाइफ बहुत फास्ट चलती है दोस्तों, लेकिन आज कुछ देर के लिए स्लो हो जाइए। हर नोट को महसूस कीजिए, हर लिरिक्स को दिल में उतरने दीजिए। ये वक्त सिर्फ आपका है, आपके प्यार भरे गानों का। तो चलिए स्पेशली स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स, ये अगला नगमा आपके नाम।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

प्यार में सबसे खूबसूरत चीज होती है उम्मीद और जब तक उम्मीद है तब तक हर गाना एक नई कहानी लिखता रहेगा तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अगला रोमांटिक ट्रैक सुनते हैं जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो मॉरिशस के बाहर भी होते हुए हमारा साथ दे रहे हैं दूर है लेकिन दिल के करीब हो आप थैंक यू सो मच जी अक्रॉस द ग्लोब इतने सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स इस वक्त इन खूबसूरत रोमांटिक गानों का मजा ले रहे हैं तो ऑन रेडियो मस्ती दिस वन गोज आउट टू यू

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: So my प्यारे प्यारे listeners, किसी को thank you कहना हो, sorry कहना हो या बस I care for you, I love you कहना हो, तो कभी कभी एक romantic song सब कुछ कह देते हैं। ये गाना उन्हीं जज्बातों के नाम, वैसे हर धड़कन की अपनी एक rhythm तो होती है ना, हर दिल का अपना favorite गाना होता है। देखते हैं आज की रात कौन सा song आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। तो ये रहा खूबसूरत सा रोमांटिक गाना रोमांटिक लवर्स के नाम।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: वैसे कहते हैं कि प्यार की लैंग्वेज अलग होती है और बॉलीवुड म्यूजिक उस लैंग्वेज उस भाषा का सबसे खूबसूरत ट्रांसलेशन है। आज की रात सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के नाम। कभी कभी जिंदगी में बस एक अच्छा गाना ही काफी होता है दोस्त मूड बदलने के लिए। इसलिए फिलहाल के लिए आप स्माइल कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और रेडियो मस्ती के साथ इस रात को यादगार बना दीजिए। वैसे आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो, ये अगला नगमा खासकर आपके लिए।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti.
2: तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत रोमांटिक गानों का सिलेक्शंस? आई रियली होप कि आप भी गुनगुना रहे हो हमारे साथ। याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी होता है। अपनी स्माइल को कभी मत खोना। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त यानी कि आज ये निशा, और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ हर रात बनती है थोड़ी और रोमांटिक। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल के लिए लेकर आई है एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो शायद इस वक्त गाड़ी में हो। सो इफ यू आर ड्राइविंग, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए। ड्राइव केयरफुली एंड एंजॉय दिस वन।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: रात का ये सुकून और आपका साथ, इससे ज्यादा खूबसूरत फीलिंग और क्या हो सकती है। तो चलिए बॉलीवुड के प्यार भरे नगमों के साथ दिल की हर धड़कन को महसूस करते हैं। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो उस एहसास को रोकना मत मेरी जान, हर याद की अपनी एक मुस्कान होती है। और आज की रात उन्हीं यादों के नाम, सिर्फ रेडियो मस्ती पर।

0: Late Night Grooves. RM2 Radio Musti.
1: कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी उसकी बातें और कभी सिर्फ एक गाना पूरी कहानी सुना देता है वो एक गाने के जरिए. So stay tuned, stay connected on RM2 Radio Musti जहां पे गिनीशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि रोमांस अभी शुरू हुआ है और आज रात एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए जो भी हो दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेंगे बाकी सब रेडियो मस्ती और बॉलीवुड संभाल लेंगे. जी हाँ दोस्तों तो ये अगला नगमा खासकर आपके लिए और उनके लिए जो आपके दिल में बसते हैं.

प्यार का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि प्यार का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन लेट नाइट कन्वर्सेशंस और रोमांटिक सॉन्ग्स का अपने ही मैजिक होता है। तो चलिए उस मैजिक को महसूस करते हैं। वैसे अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है तो उनके लिए दिल से एक स्माइल भेजिए, और अगर अभी तक कोई स्पेशल नहीं मिला तो यकीन रखे कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।

हर गाना एक पोस्टकार्ड की तरह होता है किसी की यादों से भेजा हुआ आज देखते हैं कौन सा गाना आपके दिल का एड्रेस ढूंढ लेता है कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है जिंदगी में और उस खामोशी को सिर्फ एक खूबसूरत मेलोडी ही समझ सकती है ये है आपका लेट नाइट ग्रूव्स आपके मनपसंद रोमांटिक गानों के साथ बस यूं ही आप ही साथ देते

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा साथ दिया इस खूबसूरत से शो में, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। गिनिशा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखना और बस कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। शुभ रात्रि एंड शब खैर।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.